FM 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक

0: ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पामला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देशगान। समूह स्वर में अभिलाष का लिखा ये देशभक्ति गीत सुनिए।

0: समूह स्वर में अभी आप अभिलाष का लिखा देशभक्ति गीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मीरा भजन। आरंभ में किशोरी अमोनकर का गाया ये मीरा भजन सुनिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल।

0: बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
4: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
5: संदेश से पहले लता मंगेशकर के स्वर में मीरा भजन आप सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए पंडित डीवी पलुस्कर को।

0: पोषक तत्व हावे पोटास पोटेशियम, और यह हर फसल के चमक ला बढ़ाते, गुणवत्ता ला बढ़ाते, और एक प्रकार से देखा जाए तो संगी हो यह सुरक्षा कवच के रूप में काम करते पौधा के। एकर कमी और एकर कार्य और एकर उपलब्धता बढ़ाए के बारे में बात करते हैं तो सबले पहली एकर काम ला जानना पड़ी। पौधा में जो तनाव होते वो तनाव ला बचाए मा तनाव ला दूरिया करे मा पोटेशियम काफी लाभप्रद होते। देखा जाए तो संगी हो जो फसल होते वो फसल मन के जड़ ला मजबूत बनाते, सूखा की स्थिति में भी सूखा ला सहन करे के क्षमता देते, फसल में कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते और पौधा आसानी ले गिरे नहीं। कुल मिला के बात किया जाए तो पत्ता के जो छिद्र रहते ओमा खुले और बंद होए ला नियंत्रित करते, एकर कारण से सूखा या कम पानी की स्थिति में भी पौधा जीवित रहते। पौधा के कोशिका ला मजबूत बनाते पोटास, जोनहर की फसल में फंगस कीड़ा मकोड़ा या अन्य जो आक्रमण रहते बीमारी के संभावना बढ़त रहते ओला रोकते, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते। अगर फल सब्जी अनाज की बात करते हैं दाना के आकार रंग चमक और स्वाद ये सबों में एक प्रकार से लाभकारी होते। आलू शकरकंद ये फसल मन में स्टार्च बढ़ाए में लाभकारी रहते। अगर हमन पोटास के उपयोग करते हैं तो दाना चमक आते, एकर ताजा उदाहरण किसान भाई मन स्वयं जानते हैं। हालांकि पहली एकर उपयोग के ऊपर भ्रम रही से कि यह तो ईटा गुड़ाहावे ला नहीं डालन, लेकिन आज के दौर में किसान भाई एकदम आखिर जो डोज होते जोन बेरा कल्ला निसरत रहते या जोन बेरा बाली निसरत रहते वो बेरा जरूर डालते हैं। खास तौर से फसल ला गिरे ले भी बचाते, काबर की फसल में मजबूती लाए मा एकर महत्वपूर्ण योगदान रहते। हवा पानी वर्षा जो भी होते तो एक प्रकार से सामान्य अगर नत्रजन डाला था तो मा वानस्पतिक वृद्धि होते, लेकिन एमे वानस्पतिक वृद्धि कम और एमे मजबूती ज्यादा आते और भोजन के परिवहन मा यह काफी लाभप्रद होते। कार्बोहाइड्रेट और शुगर के बात करते हैं तो ओला एक स्थानांतरण करे मा और ओला जड़ तक फल तक दाना तक पहुंचाए मा काम करते, तो ये सब एकर काम हावे। तो हमन जानत हन कि एकर कमी से बहुत सारा समस्या हो सकते। तो समस्या का होते, समस्या तो ये होते संगी हो कि पत्ता भूरा और धब्बादार हो जाते और समय ले पहली गिर जाते और पान के पत्ता के किनारे झुलसे दिखाई पड़ते। एकर कमी के कारण से मक्का के भुट्टा छोटे बनते, नुकीला और किनारे में दाना कम पड़ते, आलू के कंद छोटे पड़ जाते, जेरी के विकास नहीं होए, पत्ता मन मुड़े लागते और फल भी बेजान हो जाते, छोटे सिकुड़े हुए पोची और एक प्रकार से स्वाद भी कम आते, पौधा के तना पतला हो जाते और एकर से भी गिर जाते। तो हमन ला ये सब ला देखत हुए पोटास के उपयोग करना चाहिए। एकर बर म्यूरेटा पोटास के उपयोग कर सकता हो आपन और बहुत बढ़िया होते कि बुआई के समय बेसल डोज में एला देना। अगर एला नहीं कर पाता सल्फेट आप पोटास के उपयोग कर सकता हो। एकर अलावा खड़े फसल में भी आपन स्प्रे के माध्यम से कर सकता हो। एनपीके आते ओला भी आप मन उपयोग कर सकता हो अलग अलग प्रतिशत के, या आप मन ऐसे पोटेशियम फिक्स करे वाला आप मन जैव उर्वरक के भी उपयोग कर सकता हो। ऐसे कई प्रकार के संगी हो। अगर ये भी नहीं कर सकता तो अगर घर में आप मन चूल्हा के उपयोग करता तो चूल्हा के जो लकड़ी जला था ओकर बाद जो राग बनते राग बजते तिला भी आप मन उपयोग कर सकता हो। ऐसे कई प्रकार के उपयोग के माध्यम से आप मन संगी हो फसल ला पोटास तत्व की उपलब्धता ला बढ़ा सकता हो।
1: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी जिसमें 42 HP से 55 HP तक के 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स जोरापाली रोड रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
2: संदेश से पहले वार्ताकार रामविलास पटेल से आप फसलों में पोटाश तत्व की भूमिका विषय पर वार्ता सुन रहे थे। कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। रियल विंटर

0: केयर यानी गरिमा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: कार्यक्रम विवरण में पहले हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:40 पर रामचरितमानस कान भाग 156 का प्रसारण आप सुनेंगे। चिंतन आप सुन सकेंगे 6:50 पर। 7:05 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा हम आपको सुनवाते हैं 7:35 पर। 7:45 पर आप आनंद ले सकेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम बाजे मांदर का। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा 8:30 पर। 9:00 से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से आप सुनेंगे 9:55 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित की जाएगी 10:00। 10:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। 11:00 से शाम 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5:00 हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। झलकी हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर युवा साथी अपना कार्यक्रम ये वाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है स्वच्छता हम सभी का परम दायित्व। क्रम आप सुनेंगे रोजगार सूचना और चर्चा का विषय है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20 और रात्रि 8:00। 7:00 आकाशवाणी रायपुर से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा अभियान के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:20 पर। 7:30 पर आकाशवाणी रायपुर से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:00 से 10:00 तक। रात्रि 10:00 हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम विविध संगीत और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। कार्यालय थाना प्रभारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से प्राप्त सूचना सुनिए। सूचना के अनुसार दिनांक 27 सितंबर 2026 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से मर्ग संबंध में डॉक्टर द्वारा लिखित तहरीर पर थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई कर शव को ससम्मान कफन दफन कराया गया है। घटना क्षेत्र रावर्षण होने से डायरी प्राप्त हुआ है। मृतक बबलू उम्र 60 वर्ष का पता परिचयपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल के वारिशान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया है। ऊंचाई करीबन 5 फीट 4 इंच। रंग सांवला। सिर में बाल हैं। शरीर सामान्य है। सेंडो सफेद बनियान पहना है। गला में काला बाजारू धागा एवं ताबीज पहना है। कमर में सफेद धोती ढका हुआ है। उक्त मृतक के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होने पर कार्यालय थाना प्रभारी खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में सूचित करने की कृपा करें। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान भाग 156। स्वर ए हरि हरण और वाणी जयराम का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुँचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहाँ उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहाँ होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूँ जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: अभी ए हरिहरण और वाणी जयराम के स्वर में रामचरितमानस गान भाग 156 का प्रसारण हो रहा था। आकाशवाणी की प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। रामचरितमानस गान अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: आशा और निराशा दो विपरीत मनोदशाएं हैं, जो जन सामान्य तो क्या साधु संतों को भी प्रभावित किए बिना नहीं

0: हम जो आशा करते हैं, आकांक्षा पाल कर रखते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होने से हमें निराशा होती है। जिस मात्रा में आशा, आकांक्षा या अपेक्षा रहेगी, उससे वंचित हो जाने पर हमें उतनी ही अधिक हताशा, निराशा और कभी कभी ग्लानि की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। सामान्य व्यक्ति की मनोदशा कभी कभी इस सीमा तक बिगड़ जाती है कि वह मानसिक संतुलन खो बैठता है, को प्राप्त कर जाता है और कभी कभी आत्महत्या जैसे पाप भी कर बैठता है। अपनी सबसे प्रिय वस्तु या प्रिय परिजन का विछोह भी हमें दुखित करता ही है। सहन की सीमा से अधिक हो जाए तो भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है। इसी स्थिति को टालने या उससे अपने को बचाए रखने का मार्ग ढूंढना आज के तनावग्रस्त जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वह हमारा अपना ही क्यों ना हो, के प्रति बहुत अधिक लगाव ना हो, जरूरत से अधिक सानिध्य न रखा जाए और मोह की सीमा तक हम उसके प्रेम पाश में ना रहें, तो शायद उसका विछोह हमें उतना अधिक सालने वाला सिद्ध नहीं होगा कि हम अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठें। पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, उसकी प्रगाढ़ता को कम नहीं किया जा सकता, परंतु यदि आसक्ति की सीमा तक हम ना बढ़ें तो भी किसी संबंधी के निधन पर दुख की सीमा कम हो सकती है। या फिर यह मानकर चलें कि एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है, कोई पहले कोई बाद में। जीवन यात्रा में अनेक साथी मिलते हैं, नियत समय स्टेशन आ जाता है और वे उतर जाते हैं, नए सहयात्री मिलते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती ही जाती है। जीवन को सहज रूप में लेने वालों के लिए सुख और दुख समान रूप से आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दुख के अवसर पर अधिक दुखी नहीं होता और सुख का अतिरेक भी जिसे प्रभावित नहीं कर पाता, वही अपने को संभाल भी सकता है। ऐसे व्यक्ति वे ही होते हैं जो लगभग निर्मोही कहलाते हैं या जो निष्प्रिय जीवन व्यतीत करते हैं। सीमा तक किसी चीज या व्यक्ति में लगाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जीवन दर्शन का भी यही आदर्श है कि सम विचार रखा जाए। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकने वाले छात्र, प्रेम में असफल प्रेमी, व्यापार में घाटा उठाने वाले व्यापारी या सट्टे जुओ में हार जाने वाले जुआड़ी या तो आत्महत्या कर लेते हैं या किसी प्रतिद्वंदी की हत्या कर डालते हैं। यह स्थिति इसलिए आती है क्योंकि आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। उसकी पूर्ति नहीं होने से मन को बड़ा झटका लगता है, जिसे सामान्यतः बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि हमारी अपेक्षाएं सीमित हों तो शायद निराशा कम होगी। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य की तरक्की की प्रथम सीढ़ी हो सकती हैं, परंतु मात्र आकांक्षाएं ही फलवित नहीं हो सकती, उसके अनुरूप कर्म भी जरूरी है। यदि गीता का यह मूल मंत्र पकड़ लिया जाए कि कर्म किए जाओ, फल की आशा भगवान पर छोड़ दो, तो भी मनुष्य निराशा रूपी विकृत मनोदशा से बच सकता है। हमारे हाथ में है, फल की प्राप्ति स्वतः होगी। किन्हीं कारणों से फल की प्राप्ति नहीं हुई तो भी हमें कर्म करते रहना है, कभी न कभी तो सफलता हमारे पैर चूमेगी। इस धारणा का व्यक्ति कभी बहुत अधिक दुखी या निराश नहीं होगा। अतः आस्था और विश्वास भी सतर्कता पूर्वक होना चाहिए। अंधश्रद्धा या भक्ति कभी भी उचित नहीं मानी गई। निराशा और गहन दुख से बचने के लिए आंख कान खुली रखकर हम अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करें, आज के समय की यही मांग है।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर 6:55 होने को हैं। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्विस राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं

0: पञ्चसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावत् जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणुऊर्जाक्षेत्रे च परस्परसम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500-तोप्यधिकाः छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकम् अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 44-उत्तर-200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पञ्च विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागाउं लोकसभासने च अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामि शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचल प्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संजेतना प्रकटिता। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामि दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्याभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यमुद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पञ्चस्पर्धानाम् अस्याः T20 श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणम् अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे सायं 7 प्रारप्स्यते। अग्रिमः स्पर्धा तावत् रांची इंदौर हैदराबाद बेंगलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम

0: पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदी ग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलांग के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया ये दोगाना अभी तो जी लें फिल्म से आप सुनेंगे। इंदिवर का लिखा हुआ गीत है और सपन जगमोहन ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: आपके साथ इस फिल्म का शब्बीर कुमार और अरुणा ईरानी का गाया गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगली आवाज़ हरिहरन की। 1947 अर्थ फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर का लिखा हुआ है, संगीतकार हैं AR रहमान। ये गीत हम आपको सुनवाएंगे इन संदेशों के बाद।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotaraigarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो

यो गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अग्निपथ फिल्म का, सोनू निगम का गाया ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत है और यार

मोहित चौहान और अक्षय घोषाल के गाए इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की। दोस्तों हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पूरी दुनिया में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को मान्यता देना और समाज के कल्याण में उनके योगदान को उजागर करना है। दोस्तों इस वर्ष 2026 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय है रॉकेट क्रांति। यह विषय बहुत ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक।

देखें दोस्तों, इतिहास और महत्व को अगर समझना चाहें तो 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यही दिन अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है दोस्तों। इसी तरह 10 अक्टूबर 1967 को बाहरी अंतरिक्ष संधि आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग की नींव रखती है। इन्हीं दो ऐतिहासिक घटनाओं की याद में संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की घोषणा की। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संबंधी आयोजन बन चुका है। 100 से अधिक देशों में हजारों कार्यक्रम आयोजित होते हैं, स्कूलों में, संग्रहालयों में, विज्ञान केंद्रों में और अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा। रॉकेट क्रांति को अगर समझना चाहे दोस्तों, तो पहले अंतरिक्ष में पहुंचना केवल कुछ बड़ी शक्तियों के सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट, निजी कंपनियां, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय की टीमें और नए देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सब मिलकर एक क्रांति ला रहे हैं। रॉकेट लॉन्च की लागत तेजी से घट रही है। पहले एक उपग्रह भेजने में अरबों रुपये खर्च होते थे, अब यह खर्च बहुत कम हो गया है। इससे छोटे देश भी अपने उपग्रह भेज पा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, संचार, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत भी इस रॉकेट क्रांति का हिस्सा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कई सफल मिशन पूरे किए हैं। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल और गगनयान की तैयारी, भारत की पुनः उपयोग योग्य रॉकेट और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, यह हमारे युवाओं के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। दोस्तों, अंतरिक्ष सिर्फ चांद तारों की खोज नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी, मोबाइल फोन और इंटरनेट संचार, जीपीएस नेविगेशन, कृषि में फसल निगरानी, आपदा चेतावनी प्रणाली और जलवायु परिवर्तन की निगरानी, ये सब अंतरिक्ष तकनीक के ही उपहार हैं दोस्तों। रॉकेट क्रांति इन लाभों को और अधिक लोगों तक पहुंचा रही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह युवाओं से, विशेषकर छात्रों और युवाओं से ये अपील करता है कि अंतरिक्ष विज्ञान को अपनाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई करें। रॉकेट बनाने वाले, उपग्रह डिजाइन करने वाले, अंतरिक्ष यात्री बनने वाले, ये सपने अब संभव है दोस्तों। स्कूल और कॉलेज में अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लें, आसमान को देखें, सवाल पूछें और खोज करें, क्योंकि भविष्य का निर्माण आज की जिज्ञासा से ही होता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमें याद दिलाता है दोस्तों कि अंतरिक्ष मानवता की साझा विरासत है। रॉकेट क्रांति के इस युग में हम सब मिलकर एक बेहतर, अधिक सुरक्षित और अधिक जुड़े हुए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। आइए इस सप्ताह अंतरिक्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय अंतरिक्ष। अब एक फिल्म गीत सुनिए दोस्तों और दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे माधर। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं रामावतार साहू और यामिनी साहू।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक

कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप, आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

राम अवतार साहू और यामिनी साहू के गाए इस लोकगीत के साथ ही अब लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107 MHz पर। 7:55 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था। और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर 8 बजने को है। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा

0: असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजिंजम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
2: बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुअनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने था अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuranthakam and Dharapuram assembly.

छत्तीसगढ़ ही समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत हावे। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मन सुन सकत हो श्री मकसूदन राम साहू ले वार्ता, छत्तीसगढ़ के बनवासी मन के जिए के तरीका कैसन खुशी। ये कहानी आप मन सुनिया श्रीमती चंद्र कुमारी वैष्णवले, और कविता सुनाही श्री सुंदरलाल गंधर्व। छत्तीसगढ़ के बनवासी मन जंगल के

फूल पत्ती पशु पक्षी और चिड़ई चुरगुन के सुंदर डिजाइन उकेरे जाते। घर के चारों तरफ लकड़ी के जीवन सुरक्षा रेखा रही थे। वनवासी मन बर असली और सबले बड़े भगवान प्रकृति हरे, काबर की नदिया पहाड़ धरती और सूर्यला अपन जीवनदाता और रक्षक मानते। वनवासी समुदाय छत्तीसगढ़ के आबादी के 30% ले ऊपर हावे, जेमन गरियाबंद रामगढ़ हसदेव सरगुजा बस्तर अबूझमाड़ जैसे जंगल में निवास करते। छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र में गोंड अगरिया आन बैगा भैना भारिया भूमिया मुड़िया मारिया कोरवा हलवा उरांव भुईहर पालिया पांडो जनजाति पाए जाते। छत्तीसगढ़ के सबले जुन्ना जनजाति गोंड पैगा अभुज मारिया माने जाते। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला हरे, जिहां एशियाई हाथी जंगली भैंसा तेंदुआ सांभर चीतल और जंगली सुअर पाए जाते। वन्य जीव के रक्षा करना और वन्य जीव से अपन रक्षा करना इकर जीवन के परम उद्देश्य हरे। छत्तीसगढ़ के 44% भाग वन से ढके हवे। वनवासी मन जंगल ले चार तेंदू महुआ हर्रा बहरा बोईर कोसा बेरा बेरा में सकेलत रही थे, वही ला बाजार में बेच के अपन गुजर बसर करत रही थे। महिला मन अपन नान्हे लिका ला पीठ में बांध के मजदूरी पर निकल जाते। गांव में मौका मौका में मड़े मेला होत रहे थे, जिहा हाट बाजार जाके अपन घर गृहस्थी के सामान खरीदत रहे थे। बस्तर के कला कौशल काष्ठ कला धोखरा के कला कांस्य कला प्राचीन मूर्ति कला बांस कला माटी कला संसार में प्रसिद्ध हावे। ये कला आमदनी के जरिया बन जाते। वनवासी मन धान मक्का बाजरा कोदो कुटकी के फसल उगाते। मछली पालन के व्यवसाय घला करते। बसरिया मन के सबले प्रसिद्ध भोजन आमट है, जेला बिना तेल के बांस के कोमल और सब्जी से बनाया जाते, एला सांभर कहते। चपड़ा चटनी लाल चांटी और अंडा ले बनाया जाते। बरसात के दिन में फूटू साग घला खाते। महुआ के फूल ले बने उत्पाद और तार रस ले जेला सल्फी कही थे, यहाँ के पेय पदार्थ हरे। कंदमूल मौसमी फल रतालू खाते। दाल चावल फरा चीला पेज मुख्य भोजन हरे। कुछ साल पहले सब जगह सघन जंगल रहा है, वहाँ सिर्फ पैडगरी रास्ता में आना जाना होए, आए जाए के और कोई साधन नहीं रहे, बहुत कष्टमय जीवन रहे। एमन समस्या के अंबार के टीला में बैठ के जीना सीख गए हवा। एमन प्रकृति ला माता समझते। आप मन जानते हो कि माता अपन संतान के जीवन भर सेवा करते। साइकिल मोटरसाइकिल कार नहीं रहा त्री से, हवाई जिहाद तो पढ़े की किताब में देखे भर मिले। कागज के हवाई जिहाद बना के हवा में उड़ावें। वो समय में गांव में सड़क नहीं रही, अस्पताल के कमी, कोनो कोनो करा स्कूल रहा है, गांव में बिजली के अंजोर घड़ा नहीं पहुंचे रहा है। अब तो सड़क बिजली स्कूल पानी पुल पुलिया अस्पताल की व्यवस्था हो गया हवा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव नारायणपुर क्षेत्र में मुरिया और माड़िया जनजाति में घोटूल एक पारंपरिक युवा गृह सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र हवे, जिहां 7 दिन रात बिताते। नाच गाना करके रहना पड़ते। चेली को मोटियारी मन साथ रह के अपन जीवन साथी के चुनाव स्वतंत्र रूप से करते। 7 जन्म पर परंपरा ला निभाए भर पड़ते। वनवासी समुदाय के वरिष्ठ मुखिया के शिक्षा के बाद माने पर पड़ते। देखा सीखी माँ कुछ अच्छा सीख मिल जाते। ये विवाह परंपरा तड़क भड़क दहेज प्रथा और दिखावा के खर्चा ले दूर लड़की लड़का एक दूसर के हो जाते हैं। वनवासी मन के सदा जीवन उच्च विचार सादा रहन सहन सबला अपना

0: की जरूरत है। ये अनिवासी मन सदी से प्रकृति और पारंपरिक संस्कृति से जुड़े हवें। वनवासी मन के ऊपर उनकर अस्तित्व के ऊपर एक गंभीर संकट मंडरावत है। ये समुदाय आजकल जल जंगल और जमीन के साथ साथ अपन सांस्कृतिक पहचान ला बचाए खातिर संघर्ष करत हवे। झाड़ पेड़ बचाए बर हाथ में तीर कमान लेके आगू आवत हवे। राम के जीवन के कुछ समय वनवासी मन संग बीते हवे, तेकरे सेती वह वनवासी राम कहा हवे। सियान मान कहते जंगल में मंगल होते। छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के सहेजना यहाँ के अनूठी जनजाति संस्कृति लोकगीत और प्रकृति के गहरा जुड़ाव ला देखा थे। बस्तर और सरगुजा के वनवासी मन के जीवन में रसे बसे वाद्य मन के उपयोग केवल मनोरंजन पर नहीं करें, एकर उपयोग तिहार बार शिकार सुरक्षा और देवी देवता मन के पूजा पर करते। छठी पर ही भर बिहाव में नाच कूद के मनोरंजन कर लेते हैं और मरनी हरनी माँ अड़ोसी पड़ोसी मन ला ढाड़स बंधा देते हैं। बस्तर क्षेत्र ला छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी कहे जाते। वनवासी मन के जीवन में मंडरावत संकट ला टारे भर कालिदास आज रहतीस तब अमर नाटक लिखतीस। आज घला वनवासी मन शहर डहर जाए पर इनकार करते, अपन गरीबी जीवन में मस्त रही थे। रेला रेला रेला रे रेला रेला रेला रेला रेला रेला रे रेला रेला रेला छोकरी छोकरा ढोकरी ढोकरा तगड़ी तगड़ा करबो खेला आओ खेला रेला रेला रेला रे रेला रेला रेला रेला रेला रेला रे रेला रेला रेला लाखों दुश्मन आके खड़े तब होने वनवासी मन कभू नहीं डरे नहीं डरे रेला रेला रेला रे रेला रेला रेला रेला रेला रेला रे रेला रेला रेला। इकर प्रकृति प्रेमला जगह जगह बगरायबर पढ़ी पर्यावरण के जागरूकता के पाठ वनवासी मन से सीखना चाहिए। उनकर जिए के कला सादा सर्वदा के अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति से आधारित जीवन जीवर पर ही वनवासी मन के उजड़त जनजीवन ला बचाए के प्रयास करो बचाए के प्रयास करो।
1: छत्तीसगढ़ के वनवासी मन के जिए के तरीका ए विषय में अपन विचार रखें श्री मकसूदन राम साहू। कार्यक्रम में आगू बढ़ा थावन अब आप मल्ल सुनवा थावन श्रीमती चंद्रा कुमारी वैष्णव ले कहनी कैसन खुशी।
2: रुक्मणी और बाबूलाल के बिहावला 30 साल हो गए रही से दूधी झन बहु बेटा वाले हो गए रहीन। बड़े बेटा दुरुग में काम करते और छोटे बेटा लखनऊ में। लखनऊ वाले बेटा संग भेंट करे अड़बड़ दिन हो गए रही से फोन करके कब ले बलावत हवे। ए श्याम के बाबूजी आंसो देवारी श्याम के घर में मनाते का। बाबूलाल मूछ मताव देवत कही थे ठीक है आंसो देवारी में मैं तो लखनऊ घुमा दे हूँ। दूसर दिन रुक्मणी हाँ जल्दी जल्दी सब जन भर कपड़ा लत्ता खिलौना खाए पिए के सामान खरीद के जोर डारिस। कुछ दिन बाद दोनों रेल में बैठ गए। रेल में बैठते ही रुक्मणी के दिल के धुक धुकी बढ़ गए। महीना भर ले सपना देखत रहीस बेटा ला मया के मारे पोटार के रोहूँ बहू ला अंजुरी भर भर आशीर्वाद दे हों। दोनों नाती और नतनी ला आगू पीछू संग मसोआ के ढेला उपाना के कहानी सुना हों। मोर हाथ के भजिया कढ़ी श्यामला बड़ मीठा थे जाते ही रांधू मैं हाँ। रुक्मणी रास्ता भर उलट पुलट के सपना देखत थकिस नहीं और लखनऊ आ गए। बेटा स्टेशन में गाड़ी लेके लेगे बर आए रहीस देखते ही रुक्मणी रा रोवासी आ गए। पोटारे बर दोनों हाथ ला बढ़ाए रहीस कि बेटा हाँ हाथ ला धर के नीचे कर दिस चलो जल्दी गाड़ी में बैठो घर में सब रास्ता देखा था मैं। बेटा के व्यवहार ला देख के थोरकुन मन में खटास तो आ गईस फिर चुपे रहीस रुक्मणी। दूसर मंजिल में फ्लेट ला देख के रुक्मणी और बाबूलाल के आंखी फटे के फटे रह गए। कते का सामान ले आ हसमा गांव लहूटे के विचार नहीं लगा थे

0: अरे नहीं बेटा, ये सब मोर नाती नतनीन बहू बेटा मन बरे सब फालतू ले आए हस तह, यहाँ कोनो नहीं पहना इसना। दरवाजा खोलते ही बहू ह गोड़ छू के दोनों छन के पाँव परिस और पानी लाके दिस। तब रुक्मणी के मन ह थोड़ कुन बने लगिस। स्कूल ले दोनों लड़का मन आईन तब दोनों छन लछाती में लगा के रो डरिस। दूसर दिन बाबूलाल ह रुक्मणी के ऊपर कौवा गए, अरे लड़का मन के सामान लाए हस त देत काबर नहीं हस। बने नहीं लगी त नहीं लगी त नहीं लगी तह दे तो सही। रुक्मणी बहू के हाथ में सब सामान ला के दे दिस। बहू ए दे बेटी तुहर सब झनबर लाए हवा। बहू है एक दू ठन ल खोल के देखिस तिहा ले वापिस धर दिस। रुक्मणी सोचत रहिस सब खुश हो जाही कुछ न कुछ कोनो कही, पर कोनो कुछ नहीं कहीं न बेटा कहिस न बहू। रात में सोए बर उनखर बिस्तर लैका मन के कमरा में लगाए रहीन। तब सोचिस नाती नतनीन संग सो के सब भुला जाहूँ, पर रात में लैका मन अपन मम्मी पापा संग सोए बर चल दिन। बाबूलाल घलो कुछ उदास हो गए, यहाँ के व्यवहार वाला कुछ ठीक नहीं लगिस। बहू समय में रान पसा के दे दे, लैका मन भी हन्या ले स्कूल चल दें, आतीन त खा पी के ट्यूशन चल देतीन और वहाँ ले आतीन त दोनों झन मोबाइल में खेले लगें। बेटा ड्यूटी ले रात के 8-9 बजे आवे, थोड़ कुन बातचीत करतीस तहाँ वो हु थके मांदे सोए भर चल दें। अब दोनों गांव के सुरता में व्याकुल होए लगिन, कहाँ गांव के घर कहाँ वहाँ के खुला हवा पानी। रात में पड़ोसी संग गोठ बात और मंगलवार के मंदिर में भजन कीर्तन संगवारी मन संग रोज के घूमई बड़ सुरता आए लगिस दोनों झन लगाव के। ऊपर ले बेटा कही दे रही से नीचे मत जाना, यहाँ कोनो छत्तीसगढ़ी नहीं जाना है, कोनो से बातचीत नहीं करना, सब हंसी ही। बेटा बहु मन के रहन सहन ला देख के डर के मारे उमन खिड़की तक ले नहीं झाँके। एक दिन रविवार के दिन चलो सब झन ला घुमा लाऊं कही के श्याम सब झन ला इमाम बाड़ा भूल भुलैया पार्क घुमात रही से। उतके मोखर एक दोस्त मिल गए, वह सब लपन परिवार के परिचय कराइस, पर वो दोनों झन ल कोने नहीं कौन बताइस तक नहीं कि मोर माँ बाबूए। आगू आगू उन चारों झन और पीछू पीछू उन दोनों झन घूमते रहीं। गुपचुप खाबे माँ? नहीं बेटा। तय खाबे बाबू जी? ए बुढ़ापा में कहाँ गुपचुप बेटा, तू मन खावा ना जी। भूख तो दोनों झन ल बहुत जोर से लगे रही से, पर मन खाए के को नहीं होइस। रात में कमरा में अकेला देख के बाबूलाल रुक्मणी ल पूछते, श्याम के माँ घर जाए के मन करा थे का? नहीं श्याम के बाबू, अतका जल्दी जाबो तो गांव में सबो जन का कहीं, सब झन ल का कहबो। एक दिन श्याम ह खुदे पूछ लिस, बने लगत है माँ बाबू जी यहाँ? हाँ बेटा लगत हवय बाबू जी। मया ओखर पीठ में हाथ तो फेर दिस पर मन ह नहीं लागिस। बेटा लखनऊ आके बड़ साहब बन गए हवय, बहू और नाती मन भी ओखरे रंग में रंग गए हवय, पर हमन तो वैसने के वैसने रह गए। एक दिन रुक्मणी ह अपन लाए कपड़ा ला बहू ल काम वाली बाई ला देख लीच, ले ये गिफ्ट है तेरे परिवार के लिए दिवाली का, ले जाना इसको। मन तो ऐसे हो इसकी गुहार पार के रो डारो। दिन रात काम बुता करके गाय चरा के दाऊ के खेत के रखवारी करके उखर कपड़ा लत्ता ला धो के दोनों लड़का लतका पढ़ाए लिखाएन हमन, दोनों ला राजा सही रखेन और हमन चिराहा फटाहा पहन के रहेन, तब हमन गवैया उ देहाती नहीं लगेन। फिर आज दोनों खटिया में परे परे अपन अपन सोचत रहें, का सोच के यहाँ आए रहें और हमर का हाल हो गए यहाँ। एक दिन संझा नीचे मंदिर ले भजन गाय के आवाज आईस, त रुक्मणी के पाँव हाँ नहीं रुक सकिच, वह धड़धड़ धड़धड़ सीढ़ी ले नीचे उतर गए और मंदिर में आ गए। भजन सुन के उखर मन गदगद हो गए, माता जी आप भी एक दो भजन सुनाओ ना। सुन के उखर भक्ति भाव झूमे लगिस और एक के बाद एक ठन वह कई ठन भजन ल सुना डारिस। सुन के सब झन वाह वाह करीन। आज पहली बार रुक्मणी के मन लखनऊ में खुशी ले झूमर गए। फिर आना मंगलवार को त प्रसाद देते समय जब सब जन कहिन त हाथ लजोर के मुँह लहड़ा दी जो है हाओ जरूर आहूँ। रुक्मणी वो दिन बड़ खुशी खुशी ले ऊपर सीढ़ी चढ़ गए, पर आते ही बाबूलाल और श्याम के आगू मोखर पेशी हो गए। श्याम तो भड़क गए, मैं मना कर रह रहे हो न माँ, कहूँ आए जाए बर, का जरूरत रही से तोला नीचे जाए के। रुक्मणी चुपचाप अपराधी कस मूड गड़ाए खड़े रह गए। मोर बेज्जती कराए तो बने लगीस माँ? रुक्मणी का बताए बेटा ला, आजे तो ओला खुशी मिली से मंदिर मा, कोनो मोर गोठ बात पहनावा भाषा कुछ नहीं देखी है, बस भजन के आवाज सुन के मोला कतका बधाई दीन है, आदर सत्कार करीन है, तोला का बताऊं बेटा मैं। हाँ अब बाबूलाल भी चुप नहीं रह सकीच, वो रुक्मणी के मन के दुख ल समझ गिस। ओखर जिंदगी भर के संगवारी, ओखर सुख दुख के साथी, कभू अतका घुट घुट के नहीं रह रही से रुक्मणी हा। अब वह चुप रही तो ओला पाप लग जाही। वह जोर से बोलते, श्याम की माँ कल बिहन्ना हमन बिना रिजर्वेशन के अपन गांव चल देबो, बेटा के घर में बड़ सुख सुविधा हवे, फिर अब अपन गांव के बड़ सूरता आवत है, चल जाए की तैयारी कर ले। अरे ऐसे कैसे चल दो बाबूजी? बेटा हमन सदा के नीचे के रहैयान और तुमन ऊपर वाले हो गए हवा, कहूं ले खाप नहीं खावत हवेगा। बेटा मन बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप मन अड़बड़ छोटे हो जाते हैं, और बुढ़ापा में तो कुछ काम के नहीं रह जावाए, तो रिस्टोर रूम में पड़े कबाड़ असन हो गए हन। श्याम समझीस के नहीं, पर उखर मुँह छोट कुन हो गए। रुक्मणी कमरा में जाके जल्दी जल्दी जोरे जंगारे लगीस, आँखी में आंसू डबडबा गए। फिर आज ओला जाए के वही खुशी होत रही से जिन ओ दिन ओला लखनऊ आज समय हो रही से। ये कैसन खुशी है, ये तो रुक्मणी के अलावा वो कोई नहीं जान सकत रही ने, ये कैसने खुशी है।
1: कैसन खुशी, ये कहानी अभी आप मन सुनत रहो श्रीमती चंद्रा कुमारी वैष्णवले। और अब ए अंक के आखिर में सुनवात हन आप मन ला कविता पाठ, अवेला सुनात है श्री सुंदर लाल गंधर्व।
2: छत्तीसगढ़ी भाखा मोर पहली रचना है रे, यह आप मन के बीच में प्रस्तुत करत हूँ। छत्तीसगढ़ी भाखा गुर तुर लागे जी, छत्तीसगढ़ी भाखा गुर तुर लागे जी, गुड़ मिश्री शक्कर जैसे लागे जी, गुड़ मिश्री शक्कर जैसे लागे जी, छत्तीसगढ़ी भाखा गुर तुर लागे जी, छत्तीसगढ़ी भाखा गुर तुर लागे जी, सूजी के हलवा जैसे कुम्हड़ के पकवा जैसे, सूजी के हलवा जैसे कुम्हड़ के पकवा जैसे,

छत्तीसगढ़ी ही भाखा गुरु तूर लागे जी, छत्तीसगढ़ी ही भाखा गुरु तूर लागे जी। खुशियार के रसा जैसे आम के चूहका जैसे, खुशियार

छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तुर लागे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तुर लागे जी। दूध के खुजरी जैसे रोटी माँ खुरमी जैसे, दूध के खुजरी जैसे रोटी माँ खुरमी जैसे, गुर चीला जैसे लागे जी, गुर चीला जैसे लागे जी। छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तुर लागे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तुर लागे जी। बिहाव के करी लाड़ू जैसे छठी के तिले लाड़ू जैसे, बिहाव के करी लाड़ू जैसे छठी के तिले लाड़ू जैसे, पंचामृत जैसे लागे जी, पंचामृत जैसे लागे जी। छत्तीसगढ़ ही भाखा।

आगे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तूरी लागे जी, गुल गुल हा भजिया जैसे मिठाई मा गुजिया जैसे, गुल गुल हा भजिया जैसे मिठाई मा गुजिया जैसे, काजू किसमिस जैसे लागे जी, काजू किसमिस जैसे लागे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तूर लागे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तूर लागे जी, गुड़ मिश्री शक्कर जैसे लागे जी, गुड़ मिश्री शक्कर जैसे लागे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तूर लागे जी, छत्तीसगढ़ ही भाखा गुर तूर लागे जी। और जात जात एक ठनो मोर कविता हवे, सपना ममोर आए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। सपना ममोर आए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। सपना ममोर आए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। चिखला माटी के खेलई घर गुंदिया के बनई, चिखला माटी के खेलई घर गुंदिया के बनई, घर कुरिया मा लुकाए संगवारी। बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। चिरहा पेंट के पहनई झोला बोरी के धरई, चिरहा पैंट के पहनई झोला बोरी के धरई, पान रोटी खवाए संगवारी, पान रोटी खवाए संगवारी। बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए

कहै अंधियारी अंजोरी के कहै आँखी मपटका बंधाए संगवारी, आँखी मपटका बंधाए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। तरिया पार के फिसलै जोर जोर के चिल्लै, तरिया पार के फिसलै जोर जोर के चिल्लै, रूखी राई मा चढ़ाए संगवारी, रूखी राई मा चढ़ाए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। खो खो फुगड़ी के खेले, खो खो फुगड़ी के खेले, धुर्रम चूरी के लुकई, धुर्रम चूरी के लुकई, गोटा टेकरा मरवाए संगवारी, गोटा टेकरा मरवाए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। पुतरा पुतरी के बनै, पुतरा पुतरी के बनै, टिपा सुपा के बजै, टिपा सुपा के बजै, टुराला टूरी बनाए संगवारी, टुराला टूरी बनाए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी। भौरा बाटी के खेले, भौरा बाटी के खेले, फुरफुंदी के पकड़े, फुरफुंदी के पकड़े, पैरावट मा लुकाए संगवारी, पैरावट मा लुकाए संगवारी, बचपन

बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, गिली डंडा के खेले, गिली डंडा के खेले, गणेश चंदा के करे, गिली डंडा के खेले, गणेश चंदा के

बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, दाई ददा के चिल्लई, दाई ददा के चिल्लई, भैया भौजी के खिसियई, भैया भौजी के खिसियई।

0: संगवारी बचपना के बात बताए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी, सपना ममोर आए संगवारी, बचपना के बात बताए संगवारी।
1: अभी आप मन श्री सुंदरलाल गंधर्व वाले कविता सुनत रहे हो और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला यह विदा देवा। जय जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। आकाशवाणी का
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आइए सुनते हैं सिंघम रिटर्न्स। इस फिल्म से गाना अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाजों में, संदीप नाथ के बोल और म्यूजिक है अंकित तिवारी का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं।

0: हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: तो याद आ गया होगा दोस्तों आपको, ये गाना फिल्माया गया था विनोद खन्ना पर।
1: मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो।

0: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है।
3: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
2: जो पंचों की राय,
3: तुमने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।

आनंद रहती। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: अरमाना।
1: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
2: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो,

अभिनेता विनोद खन्ना के कैरियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान के इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। ओ बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना दोस्तों अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: जाने फिल्म हेरा फेरी।
1: पर चिंता की कोई बात नहीं,
2: नहीं
1: हम हैं तेरे साथ,
2: बिल्कुल
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
2: क्योंकि

0: की है फेरी है।
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

करती है। चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

0: विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 106.7 MHz पर। 9:55 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सिंगापुर की कंपनी छत्तीसगढ़ में एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। और कोरबा जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल कंपनी छत्तीसगढ़ में एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सिंगापुर में आयोजित पहले सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम में 43,250 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 100 MW क्षमता का एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित किया जाएगा। सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोरम में राज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां छत्तीसगढ़ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर सहभागिता कर रहा था। बस्तर संभाग में 4 जिलों के 3,800 से अधिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए जगदलपुर में आयोजित सहायता शिविर का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। शिविर में नक्सल विस्फोट, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से अंग गंवा चुके लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञ मौके पर ही कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर्स तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, और श्रवण यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम दिव्यांगजनों का परीक्षण कर मेडिकल प्रमाण पत्र जारी कर रही है और उन्हें दिव्यांग पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। शिविर के पहले चरण का कल समापन होगा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम परसा भदेर में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का कल परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाओं को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है। आने वाले समय में लोग वाहन संबंधी जरूरी कार्य घर बैठे पूरा कर सकेंगे। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और स्कूली बच्चों को वाहन न चलाने देने की अपील अभिभावकों से की। वहीं राजस्व मंत्री ने कहा कि जिले में जल्द ही अत्याधुनिक वाहन टेस्टिंग सुविधा शुरू की जाएगी। इससे लोगों को वाहन जांच के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कल 7 और परसों 8 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में करीब 8,000 युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए अब तक

0: 66 कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों ने रिक्त पदों की जानकारी दे दी है। रोजगार मेले के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कोरबा जिले में सोमवार हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो बाइकों को एक साथ टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक हादसा दो नंबर खदान रोड के पास हुआ। दोनों बाइकों पर दो दो लोग सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं राजनांदगांव जिले के ठेलकाडीह मुख्य चौक पर सोमवार शाम तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक शिक्षिका की मौत हो गई जबकि दो छात्राएं घायल हो गईं। तीनों स्कूल से छुट्टी के बाद बस का इंतजार कर रही थी। मेडिकल जांच में वाहन चालक ने शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक के रूप में मोहम्मद आरिफ की नियुक्ति की गई है। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वाणिज्यिक विभाग से जुड़े हैं। इससे पहले वे बागडोगरा एयरपोर्ट और कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंगापुर की कंपनी छत्तीसगढ़ में एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। रायपुर में कल से दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और कोरबा जिले में हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नारी सशक्तिकरण सर्वोपरि है, इसलिए लोक कल्याण की अवधारणा को लेकर शासन ने महिलाओं के विकास और संबल के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं स्वावलंबी बने और समाज में स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करें। महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना हो या आर्थिक मजबूती के लिए लखपति दीदी योजना हो, सभी का उद्देश्य

0: आज यहाँ महिलाएं खेतों में ड्रोन उड़ा रही हैं, तो सड़कों पर चला रही है ई रिक्शा। स्वयं का ई रिक्शा पाकर उसकी मालिक बनकर महिलाएं खुश हैं। सड़कों पर सरपट ई रिक्शा चलाने वाली हर नारी अब बन गई है ई रिक्शा दीदी। आज उसकी नजर जितनी सड़क पर है, उतनी ही उसकी दृष्टि है अपने घर परिवार पर, उसकी खुशहाली पर। सरकार ने ई रिक्शा दीदी को विकास की आत्मनिर्भरता की एक नई राह जो दिखाई है।
1: मेरा नाम देवेंद्र कुमार देवांगन है। अभी मैं वर्तमान में रायपुर जिले में प्रभारी सहायक समाज के पद पर पदस्थ हूँ। श्रम विभाग के अंतर्गत दीदी ई रिक्शा सहायता योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संघ निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे श्रमिक होते हैं जो विगत हमारे यहाँ 3 वर्षों से पंजीकृत होते हैं, वो पात्र होते हैं, और इसके अंतर्गत जो सहायता राशि प्राप्त होता है वो क्रय मूल्य राशि का, ई रिक्शा के क्रय मूल्य राशि का 60% या अधिकतम 1.5 लाख रुपए, जो भी कम हो, वो अनुदान के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। ई रिक्शा सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे निर्माण श्रमिक की महिलाएं हैं वो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और अपने आय के एक निजी साधन के रूप में जनरेट करें। इसके अलावा इस योजना के आवेदन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज लगते हैं, वो दस्तावेज मुख्यतः ई रिक्शा को तय करने के समय जो ऋण प्राप्त करते हैं वो ऋण संबंधी दस्तावेज रहता है, हितग्राही का जीवित पंजीयन कार्ड रहता है, श्रमिक पंजीयन और आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक। इन दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन वो या तो समय जैसे एक के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, अथवा अपने नजदीकी CHC सेंटर या हमारे श्रम विभागीय कार्यालय में उपस्थित होकर भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत रायपुर जिले में लगभग 650 से अधिक श्रमिकों को हम लाभान्वित कर चुके हैं और आगे भी इसमें आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिसे लाभान्वित हम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाएं जो है वर्तमान में स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें जो सब्सिडी है ना, वो क्रय मूल्य जो रहता है ना ई रिक्शा का, उसका 60% अथवा अधिकतम 1.5 लाख होता है। इसमें से जो भी कम होता है वो अनुदान के रूप में प्राप्त होता है उनको। अगर रायपुर जिले में आप करना चाहते हैं तो आपके नजदीकी जो चॉइस सेंटर रहते हैं वहां से भी आवेदन हो जाता है, अथवा समय जैसे एक है मोबाइल ऐप जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसमें से भी आवेदन हो सकता है। इसके पश्चात हमारा जो श्रम विभागीय ऑफिस है सिविल लाइन थाने के पास, यहाँ आकर भी यहाँ पंजीयन काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें घर का बाउंडेशन नहीं है, इसमें जो है ना श्रमिक कार्ड का बाउंडेशन है। ऐसे श्रम कार्ड जिनका पंजीयन हुए 3 वर्ष हो चुके हैं और निर्माण श्रमिक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं।

वैसे तो जो है ना उसका आवेदन कर सकते हैं। अगर बिहार से जुड़ी महिलाएं हैं जो अपने श्रमिक का निर्माण श्रमिक का काम कर रही है, रजा मजदूरी का, वो अपना श्रम कार्ड बनाए हुए हैं, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में जिन महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है उनमें से कुछ महिला श्रमिकों द्वारा बताया गया है कि वो 15 से 20 हजार रुपए आय प्रतिमाह जो है ना इसमें से प्राप्त कर ले रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने ई रिक्शा दीदी सहायता योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए ई रिक्शा मूल्य का 60% या अधिकतम 1,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है, ताकि सभी पात्र महिलाएं दीदी ई रिक्शा योजना का पूरा पूरा लाभ ले सके।
1: पहले हम मन थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए अपन घर वाले ऊपर डिपेंड रहे हैं, ओगर से पैसा मांगन है खर्चे के लिए, लेकिन अब ऑटो चला के हम खुद से आत्मनिर्भर बने हैं और घर के खर्चे में भी अपन योगदान देते हैं।
2: पहले तो हम घर में रहन घर गृहस्थी से बाहर नहीं निकले रहे हैं, अब जब से बिहार में जुड़े हैं ना और बाहर निकले हैं, तब NRD के तहत हमला ऑटो मिली से अब हमारा नया रायपुर में अपन ऑटो चला था और अपन रोजगार ला आगे बढ़ा।

छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा संचालित दीदी ई रिक्शा सहायता योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। इससे दीदी स्वरोजगार के द्वारा अपने परिवार की आय बढ़ा रही है। इस योजना के आने से महिलाओं ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है और परिवार के सभी सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज सिर्फ घर की दहलीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अब बन गई हैं समाज की, आर्थिक विकास की धुरी।

0: वैसे तो छत्तीसगढ़ शासन ने समाज के सभी वर्गों के चहुमुखी विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही दीदी ई रिक्शा योजना सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। पहले ये माना जाता था कि व्यावसायिक तौर पर वाहन चलाने का काम महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन ई रिक्शा हैंडल थाम कर महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे वे न कर पाए। आज ई रिक्शा की सारथी बनकर दीदियां अपने सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं।
1: मैं अभी 3 साल पूरा हुआ मैम मुझे रिक्शा चलाने के लिए, क्योंकि जो महिलाएं थी उनको बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए मैं रिक्शा चलाने का निर्णय ली हूँ। मैं 12वीं क्लास तक ही पढ़ी हूँ मैम, और आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, पर मुझे जो समस्या थी जो महिलाओं के साथ कुछ अनहोनी होती थी, तो उसको देखते हुए मेरे परिवार वाले लोगों ने मना कर दिए पढ़ाने। पहले तो मैं मुझे मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी और मैं अपने पति के कमाई पे निर्भर थी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं भी जो महिलाएं कर रही है काम, और मैं कुछ अलग काम करूं जहां गांव में कोई उनको सम्मान नहीं देते महिलाओं को, और मैं अलग से वो काम करूं जो ई रिक्शा निकाल के मैं चलाने लगी हूँ। सुरक्षित हूँ मैं, क्योंकि ना ई रिक्शा से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो 2 महिलाओं को बैठा के लेके जाती हूँ, तो मुझे सुरक्षित ही लगता। लोग बोलते थे कि महिला होके भी ई रिक्शा चलाती थी, पर मैं ना अपने अंदर जो झिझक थी मैं उसे डरी नहीं हूँ और डट के सामना की हूँ समाज का। जो मेरे महिलाएं हैं मेरे साथी, उन लोगों ने बोला कि दीदी आप कर सकती हो, आसानी से आप ये कर सकती और आगे बढ़ सकती है। पिता की यहाँ भी परिस्थिति थोड़ी गंभीर थी, उसके बाद शादी के बाद यहाँ भी आई, तो मुझे लगा कि मैं कुछ काम करूँ। जो रिक्शा चलाने का सोची हूँ तो वहाँ हमेशा मुझे 2 पैसा मिलता है, और जो आर्थिक परिस्थिति थी बच्चों को पढ़ाई करनी है और फीस देना है बिजली बिल, तो उसे मुझे ये रिक्शा चलाना से पूरा हो जाता है मैम, और मेरी आर्थिक स्थिति भी पूरी बदल गई है, घर से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि मेरी तो पढ़ाई नहीं हो सकी जो मैं सोची थी, पर जो बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे, उसे मैं पूरा करूँगी, और मैं ऑटो रिक्शा भी लेके मैं ड्राइवर रख के और आगे बढ़ सकती हूँ। मैं मेरे पास स्कूटी का लाइसेंस था, उसी में वो ई रिक्शा मुझे मिला है। मेरा 2 बच्चे हैं मेरे, एक बड़ा बेटा है वो 12वीं क्लास निकल गया है।

0: और मेरी बेटी है वो 10वीं क्लास में है अभी, और मेरा बेटा भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और मैं ना अभी कंप्यूटर भी कर रहा है, ITI भी कर रहा है, अच्छे
1: क्या
0: से
1: बात
0: पढ़ाई
1: है,
0: कर रही हूँ। जैसे कि अभी बच्चे छोड़ती हूँ सुबह 8 बजे से,
1: जी
0: स्कूल बच्चे को छोड़ती हूँ, उसका मुझे अलग पेमेंट मिलता है, और दिन भर मैं जो चलाती हूँ वो घर खर्चे के लिए मुझे पूरा हो जाता है। मैं 5-6 घंटे चला लेती हूँ सुबह 8 बजे से। मैं जो स्कूल बच्चे हैं उनको छोड़ देती हूँ 10 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सा घर का काम रहता है उसे निपटा के मैं और संस्था से काम करती हूँ वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद प्लस 3 बजे मैं और बच्चे लोगों को छोड़ने जाती हूँ, और जो टीचर लोग जाते हैं गाँव से, बस नहीं है तो
1: अच्छा
0: मैं उनको भी, और शाम को 5 बजे उनको भी छोड़ती हूँ घर। वहां तो छुरिया में ई रिक्शा है ही नहीं था। मैं जैसी मैं छुरिया में पहली रिक्शा ड्राइवर बनी हूँ
1: क्या बात
0: वहां
1: है,
0: छुरिया में, जो कि महिलाएं बहुत ही दिक्कत से, बस नहीं चलती, एकदम दूर दराज से महिलाएं आती थी बैंक। उसकी मैं प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी हूँ, और उसी को देखते देखते ही मैं अपना ई रिक्शा चलाने का भी निर्णय ली हूँ। तो महिलाएं बहुत दिक्कत में रहती थी, बैंक आती थी समय में, घर नहीं जा सकती थी, और
1: जी
0: घर से भी परेशान, किसी का छोटा बच्चा रहता था वो भी परेशान रहती थी, इसीलिए मैं रिक्शा लेके उसे समय पे घर छोड़ती हूँ, और उनका समय भी बच जाता है। उनको भी मैं प्रेरणा देती हूँ मैम कि घर से बाहर निकल लोगे तभी डर भगेगा, और हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैर पे खड़े होना है। तो इसीलिए उनको भी बताती हूँ कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसी प्रेरणा देती हूँ मैम उन लोगों की
1: जी
0: कि
1: बहुत
0: आप
1: अच्छी
0: आगे
1: बात है।
0: बढ़ सकते हैं।

0: छत्तीसगढ़ में ई रिक्शा चलाने वाली दीदियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अल सुबह ई रिक्शा लेकर अकेली घर से निकलती है और देर रात तक निडरता के साथ सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। दीदियों का कॉन्फिडेंस तारीफ के काबिल है, तो साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार भी प्रशंसा की पात्र है। समाज को ई रिक्शा चलाने वाली दीदियों पर नाज है।
1: मेरा नाम तिलक राम साहू है, मैं कल्याण ई रिक्शा हूँ, जिला राजनांदगांव। अपने यहाँ क्या है, श्रमिक है जो कंस्ट्रक्शन साइट निर्माण श्रमिक में जो काम करते हैं महिलाएं, उनके स्वावलंबन के लिए ये योजना संचालित है, ई रिक्शा सहायता योजना। योग्यता तो कुछ नहीं रहता, ये श्रमिक है। श्रमिक जो है कम से कम आठवीं तो पास हो जो ड्राइविंग लाइसेंस बना सके। ई रिक्शा का या चार चक्के का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए तो पढ़ाई कम से कम योग्यता होना ही चाहिए। श्रम संसाधन केंद्र जनपद पंचायतों में, नगर पंचायत है अपने नजदीकी जनपद पंचायत, और श्रम कार्यालय है या कोई भी च्वाइस सेंटर है, लोक सेवा केंद्र है, ऐसे जगहों में संपर्क किया जा सकता है। और दूसरा हमारे विभागीय साइट है, श्रमे जैसे ऐप है।

0: एप के माध्यम से भी जानकारी मिल सकता है, उसमें भी साइट में विज्ञापित है योजना के संबंध में।
1: जी।
0: सब्सिडी का है तो इसमें जो कोटेशन या ई रिक्शा की जो लागत राशि है उसका 60% या अधिकतम 1.5 लाख रुपया इसमें अनुदान राशि का प्रावधान है सर। जी, श्रम विभाग द्वारा संचालित है
1: जी।
0: अब इससे सारी जानकारी संगठित मंडल, निर्माण मंडल है और अन्य है, इसमें पंजीयन से लेकर योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन होता है, स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें डॉक्यूमेंट में है हमारा श्रमिक कार्ड 3 साल पुराना होना चाहिए, पूर्व पंजीकृत होना चाहिए और महिला की उम्र है 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। जिसमें कोई भी महिला अपना आवेदन बैंक जिस बैंक में उसका बैंक खाता है वहाँ अपना लोन स्वीकृत करवा के, स्वीकृत कराने के उपरांत जो गाड़ी है ई रिक्शा, इस ई रिक्शा क्रय करने के उपरांत आरसी बुक जो आएगा, आरसी बुक के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक खाता और बैंक की स्वीकृति पत्र के साथ अपना कोई भी ऑनलाइन सेंटर में या श्रम कार्यालय में कर सकते हैं। ई रिक्शा वेंडर है तो अपने हिसाब से गाड़ी क्रय करने परचेज करते हैं, कहीं से भी हो, चाहे राजनांदगांव से हो, दुर्ग से हो या रायपुर से, जहाँ से सुविधा और कम लागत में जो भी अच्छे ई रिक्शा मिले वो अपना कोटेशन लगा के अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और किसी के प्रारंभ से आज दिनांक लगभग लगभग 270 महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी है सर। इससे महिलाएं जो है स्वयं चालन करती है और अपने कम से कम दिन की मजदूरी कम से कम 400-500-600 रुपए तक ले सकती हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो एक ई रिक्शा खरीदने के बाद अपना 2 और 3 ई रिक्शा भी खरीद के चला रही हैं, ऐसे भी महिलाएं हैं अभी वर्तमान में। तो अच्छा प्रोग्रेस मिला है इसमें और अच्छा स्वावलंबी हुए हैं, इसमें सशक्त हुए हैं।

ई रिक्शा दीदी योजना से महिला श्रमिकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। ये योजना महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन का अवसर दे रही है। इस योजना के माध्यम से आज महिलाएं सफलता और आर्थिक स्वावलंबन की राह पर सीना तान कर चल रही हैं। वास्तव में ई रिक्शा चालक के रूप में महिलाओं ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। इन दीदियों ने अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर एक मिसाल कायम की है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है और औसत पारिवारिक आय 40 से 45 हजार रुपए प्रति माह तक पहुंच गई है। ई रिक्शा दीदियों की साहसिक यात्रा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के महत्व को उजागर करती है। जब इन्हें लचीले और उत्तरदायी तरीके से डिजाइन किया जाता है तो ये योजनाएं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले अनेक जोखिमों का समाधान कर सकती है, उनके स्थायी आजीविका में मदद कर सकती है। छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं के आत्मबल को ऊंचा उठाने के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, महिलाएं उनका पूरा पूरा लाभ ले रही हैं। दीदी ई रिक्शा योजना की हितग्राही महिलाएं

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं।
3: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
4: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। संचालन रामविलास पटेल का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रवि आनंद।

0: लोकगीतले सजी फोन इन फरमायसी कार्यक्रम हेलो संगीमा आप जम्मो के स्वागत है। आज की ये कड़ी मा आप मन के अभिनंदन करते स्वागत करते आप मन के मितान रामविलास पटेल झोकाओ राम राम जय जुहार। संगी हो चला बात करी हमार आज के पहली संगवारी ले। हेलो संगी।
1: राम राम भैया।
0: राम राम जय जुहार। हेलो संगी, कार्यक्रम में पवन कुमार सेन जी के स्वागत है, अभिनंदन है।
1: रामविलास पटेल के हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देवा था भैया।
0: जी जी जी, आप मन के अभिनंदन है। संगवारी बताओ हाल चाल कैसे है आप मन के डहर?
1: बने हवे हमारे में बस बड़ा सुहारी धमका था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: लेकिन आप मन से बहुत दिन बाद आज बात करे मौका मिली रामविलास भैया, तो एकदम चोला गदगद हो गए हरिया के तको।
0: जी जी जी, हम अगोरा रहे थे हमारे नियमित श्रोता मन से बातचीत करन करके, लेकिन परिवर्तन करत रहे थे कार्यक्रम में ताकि हर एक संगी जोहरिया से आप मन के बातचीत होत रहे, एक दूसरा ला जाने परखे के मौका मिलत रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, आज कैसे मैं जाने सुने असन में ना फोन लगाओ कि आज रामविलास भैया से बात करे के मौका मिली करके।
0: जी जी, तो चला आप मन जान डारो, बहुत बढ़िया अच्छा बात है। और आज के कार्यक्रम में का गीत सुना संगवारी, मतलब का पसंद है आज?
1: लाल बर्मन के आवाज में सुना देते भैया, भी ना छुनू छुनू तो पहली है सुना थे।
0: लेवा फिर सुनाओ ये सुघर गीत ला आप मन के रेडियो सेट में फोन करे एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप संग में हमारे नवा कार्यक्रम प्रमुख भाई रवि आनंद लता को गाड़ा गाड़ा तो धन्यवाद देवा तो भैया मैं।
0: जी, कार्यक्रम के माध्यम से अहुमन तक पहुँचते आप मन के शुभकामना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम है। हेलो संगी।
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते जी। हेलो संगी माँ, स्वागत है जी। जी जी नाम लो बतावा जी।
1: वैशाली पटेल रायपुर से बोला था भैया।
0: जी वैशाली जी, बहुत अच्छा लागते कार्यक्रम माँ, हमारे नियमित श्रोता संगवारी
1: बहुत
0: में जुड़ते हैं
1: अच्छा
0: तो।
1: लगते, बहुत इतना अच्छा लगते।
0: अच्छा, तो ये बताओ वैशाली जी कि अभी की स्थिति में रेडियो सुन के आप मतलब का का लाभ होते, का फायदा होते?
1: बहुत कुछ फायदा होते भैया, मन ला शांति मिलते है। जो छोटे छोटे सब समाचार आते वो सब इतना अच्छा लगते, गाय पशु घर बार द्वार इतना अच्छा, मैं ज्ञान वर्धक बात सुने ला मिलते, छोटे छोटे गाना वाना सुनते रहते तो मन ला शांत मिलते, बहुत अच्छा लगते
0: जी,
1: भैया।
0: तो आप मन का करता हो?
1: हमारा दुकान है भैया यहाँ रायपुर में, फूल चौक में दुकान है और समता कॉलोनी में घर है।
0: अच्छा, तो आप मन सिलाई विलाई के काम करता?
1: हाँ, सिलाई विलाई के काम होते मोर, स्टाफ रखे हाँ। मैं गांव से हाँ भैया, गांव से आए हैं यहाँ, इतना दूर आए हैं अपन पैर।

0: जी बहुत बढ़िया लागिस वैशाली जी आप मन से बात करके। तो का एकर बारे में आप मन आगू बढ़ा तो कोई प्रशिक्षण ले है, ट्रेनिंग ले है, या घर में आप मन के सिलाई कढ़ाई के काम शुरू होत रही से पहली ले?
1: ट्रेनिंग ले हम भैया छोटे से लोरमी शहर है हमारे गांव के पास ना, वहाँ से छोड़ना है। 6 महीना ले ट्रेनिंग ले रहे हैं एक झन दीदी संग, ओकर बाद सीधा बिलासपुर में खोल देते हैं तो वहाँ नहीं मिलीस मोला, फिर सीधा रायपुर आ गए। मम्मी पापा मन मना करी से मत जा बेटी, यहाँ का कमी है ऐसे रखे, लेकिन मोला खड़ा होना रही अपन पैर में। मोर पीछे मोर भाई बहन है, चाचा के छोटे बड़े सब लाना रही भैया अपन पीछे, तो अभी बहुत आगे। अब वही मम्मी पापा मन मोर लिए इतना खुश होते, इतना खुश होते कि मोर बेटी है वहाँ है, वहाँ काम करते देखे
0: जी जी
1: बताते मस्त की हाँ मोर बेटी वहाँ करते, तो मोर दिल लगना सबको मिलते भैया।
0: जी
1: आज कल तो ऐसे बोलत रहे आवाज मोर ताई दादा मस्त मन अच्छा बोलते कि हाँ शान के साथ बताते कि मोर बेटी वहाँ है।
0: जी अच्छा।

0: आते हैं आजकल लड़का लड़की में भेदभाव ला हमला मिटाना है और लड़की मन भी आगू बढ़त है और एक ताजा उदाहरण आप मन खुद हावा कि आप मन स्वयं आत्मनिर्भरता की ओर जो है अपन के कदम ला बढ़ा था और दूसर ला सहयोग भी करा था, स्वरोजगार के डहर मत चला था, रोजगार भी दिए था। कार्यक्रम में आज का गीत सुनिए आप मन।
1: हरे धन धन है मोर किसान।
0: भैया लाल हेड़ाउ के स्वर महावे गीत है ना।
1: हाँ
0: चला फिर सुनाओ जी आप मन के पसंद के ये सुघर गीत ला। बहुत अच्छा लागिस आप मन से गुड बात करके। हमन ऐसे चाहबो कि ऐसे कार्यक्रम से जुड़त रहो, फोन करत रहो।
1: कॉल उठा ले खबर। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भैया।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: एक कुरिया में गाय के कोठा पोखरो ऊपर नहीं मचा।
1: हेलो संगी।
2: जय राम संगी।
1: जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी। बतावा जी हाल चाल जी, नाम लो बतावा जी।
2: सब बढ़िया भैया, मैं नान घाट कातर बोले बोला था भागसी राजपूत।
1: हाँ सब बढ़िया है राजपूत भैया, हाल चाल बढ़िया है, आप मन के बतावा।
2: हाँ सब बढ़िया है भैया, ये दिन इंदई कोई काम बचे है तेन चला थे।

0: थोड़ा बहुत।
1: अच्छा, फसलेदारी कैसे है?
0: फसल तो बहुत बढ़िया है सर जी, का है रोपा हवा, घर की खेती पूरा अधिया ले, पाँच छह ही करते हैं, दोबारा पद्धति।
1: और पानी कांजी कैसे है फसल भर?
0: पानी तो बढ़िया भैया, ये 2-3 दिन पहले अच्छा झमाझम बारिश हुई से।
1: अच्छा, तो का अवस्था में धान अभी निसरत है?
0: बहुत अवस्था में थे भैया, पोटरी खींचा थे।
1: हाँ, तो ये बेरा तो विशेष ताना छेदक लगे के संभावना रहते जी, विशेष तौर से इल्ली मन घुसते है ना?
0: देख रेख करेल पड़ी भैया, काहे का
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: अवस्था मार थे, कीटनाशक
1: हाँ
0: डाले
1: हाँ हाँ
0: पड़ी।
1: बिल्कुल सही कहा। और आप मन से कहना चाहो कार्यक्रम के माध्यम से कि नियमित रूप से निगरानी करिए, ओकर बाद दवाई की छिड़काव करिए तो बढ़िया रहते, नहीं तो खर्चा हर बढ़ जाते।
0: हाँ भैया, हाँ
1: तो भाग सिंह राजपूत जी हमारे नियमित श्रोता हवा, हमारे कार्यक्रम में आज का लोक संगीत पसंद करा था।
0: राधाराम मरावी के आवाज में सुनवा दे है भैया, करुआ रे करेला बैरी तरे
1: तरे
0: मम्मी ठाठे
1: मामी
0: वाले गीत ला।
1: ठाथे, ओहो बहुत बढ़िया है संगीत, बढ़िया लागते। तरिया तो बड़ा मीठ लागते, करू तो जरूर लागते, लेकिन स्वाद हर बहुत आनंदित कर देते।
0: स्वाद बढ़ जाते भैया।
1: चला फिर सुनाओ जी, आप मन की पसंद के साधराम मरावी जी के स्वरमा ये सुघर गीत ला, फोन करा माया जोर के एक बार धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया।

0: हेलो संगी।
1: हेलो संगी।
0: हाँ जी, स्वागत है। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
1: मैं दिलीप देवांगन बोले गांव से बोल रहा हूँ सर,
0: दिलीप देवांगन।
1: दुर्ग जिला।
0: अच्छा, दिलीप जी कहाँ करता?
1: मैं अभी बिजली काम करता हूँ सर।
0: अच्छा, और आप मन हमारे कार्यक्रम में पहली बार फोन लगा है, करबर बधाई है, धन्यवाद है आप मन
1: बहुत
0: ला।
1: ट्राई कर रहा हूँ सर,
0: अच्छा, तो कब ले सुना था आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम?
1: मैं बहुत दिन हो गया सर, मैं फोन ट्राई करता हूँ आपके पास तो फोन लग भी नहीं कर रही से, आज बहुत देर की बात लगी सर।
0: जी जी तो आज
1: जी
0: का
1: जी
0: गीत
1: कोई
0: सुनिया सुनाहा संगवारी मल्ला।
1: भी अच्छा गीत सुना दो सर।
0: अच्छा, घर परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मोर यहाँ मिसेज है जो मितानिन के काम करते,
0: जी,
1: और मोर यहाँ दो जन बहू बेटा है सर, वो कंपनी में जाते, लड़का मन है,
0: जी
1: अब
0: जी
1: बहू मन तो घर में रहते,
0: चला
1: और छोटे
0: चला।
1: छोटे नाती मन है सर, तो वो अभी स्कूल गए हैं।
0: अच्छा, चला, बहुत
1: हाँ
0: अच्छा भरा परिवार है आप मन के, और भरे
1: जी जी
0: परिवार में सुनाओ ये सुघर लोकगीत। लव फोन करे एकर बार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी जी सर, जी, बहुत अच्छा सर।
0: हेलो संगी। हेलो संगी
1: हेलो संगी,
0: जी।
1: वैशाली। मैं
0: हाँ जी, बताओ जी, कौन बोला था?
1: गीता साहू बोला था, करेली छोटी धमतरी जिला। मैं
0: अच्छा, गीता साहू जी, कहाँ करता जी?
1: कपड़ा लाता सिलता जी, लेडीज
0: कपड़ा लत्ता सिलता हो? कहाँ का सिलता जी?
1: काम है, ब्लाउज लहंगा
0: अच्छा,
1: वगैरह।
0: तो कैसे लागते काम में?
1: बढ़िया लगते, आनंद लगते, बस काम करत रहता हूँ।
0: अच्छा, और रेडियो सुनत
1: ये
0: रहता हो?
1: कार्यक्रम लग सुनत रहता हूँ।
0: हाँ, तो ये में तो अच्छा है कि काम भी होते रहते और रेडियो के आनंद भी लेते रहते, सूचना मनोरंजन सब वो जानकारी कान में भरात रहते और इतनी एनर्जी के साथ काम भी होते रहते। कहा तो
1: बस
0: आकाशवाणी रायगढ़ लग कब ले सुना था आप मन?
1: इसे लगभग साल भर हो जाते। आज
0: जी, तो का लोक संगीत पसंद करा था आज?
1: ए वाला गाना सुना हूँ, कविता वासनिक के, धनी बिना जगे लागे
0: लागे
1: सुना।
0: सुना। वाह वाह, बहुत सुघर गीत है पसंद आप मन के, तो लेवा फिर सुनाओ आप मन के रेडियो सेट मा ये सुघर गीत ला। फोन करा माया जोर के एकर बार, धन्यवाद।

0: हेलो संगी।
1: हेलो संगी, हेलो संगवारी।
0: हाँ जी संगी, बतावा जी, नाम जी, कौन बोला था जी?
1: मैं निर्मल साहू धमतरी मगल रोड से बोला था संगवारी।
0: निर्मल साहू जी, निर्मल हो गया हमारे कार्यक्रम, आप मन के फोन आई तो
1: अरे अरे अरे, धन्यवाद भैया।
0: का कर था निर्मल जी?
1: मैं थोड़ा बहुत किसानी के साथ में संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं भैया।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गीत संगीत में तो जादू है कि भूख प्यास सब वो मिट जाते, दुख पीड़ा दूर हो जाते,
1: अरे अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल।
0: है ना?
1: और हम तो आपके रेडियो सुना सुना था, हमारा इसने दुख की बिस्तर जो थे। हाँ
0: चलो संगी, यही बात अच्छा लागे जान के, गीत संगीत में वो जादू है वास्तव में कि हमारे दुख पीड़ा हर बिसर जाते, दूर हो जाते, धुरिया हो जाते और हम भुला भी जाथन।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन हमारे
1: भैया।
0: श्रोता संगवारी से हमन पूछे पर नहीं भुलावन की का गीत सुनिए तेला, बतावा।
1: हाँ, मोला सुनना है भैया, वो कृष्ण कुमार पाटिल के,
0: हाँ।
1: डॉक्टर कृष्ण कुमार पाटिल की ये गीत है। माघी पुन्नी रात आगे आबे रे आबे संगवारी।
0: वारी, वाह वाह, बहुत सुघर
1: ये
0: गीत है, बहुत सुघर गीत है। आप मन के माध्यम से सुनी ये रेडियो सेट में सुघर गीत ला, फोन करा एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद भैया।

0: छत्तीसगढ़ में फिर जन्म लेन यही सरग कस भुइया।
1: संगी हो ये तो रही से सुघर गीत और संगीत के क्रम हेलो संगी। और आज के ये कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिले रही से भूपत सिंह ध्रुवे के और कार्यक्रम में संचालन और प्रस्तुति सहयोग रही से रामविलास पटेल के और कार्यक्रम की प्रस्तुत करता रही ने रवि आनंद। तो संगी हो आज के ये सुमधुर कार्यक्रम ले देव विदा। राम राम, जय जुहार।
2: छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 11 बजने को है। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं अली सरदार जाफरी के इस गुलाम के साथ, आवाज जगजीत सिंह की।

पामेला जैन की आवाज में अभी आपने मदन मोहन महेश्वरी की ये रचना सुनी, संगीत दिया था कुमार मंजुल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल का गाया ये गीत।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे

0: साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम. तो इसको लीला बोलते हैं.
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर.
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई.
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गालिब का ये कलाम.

लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया था आनंद मिलिंद ने। और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम

0: यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सिंगापुर की कंपनी छत्तीसगढ़ में एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। और पेंड्रा पुलिस ने एक यात्री बस से करीब 1,20,00,000 रुपए का गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल कंपनी छत्तीसगढ़ में एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सिंगापुर में आयोजित पहले सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गए छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को 43,250 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित किया जाएगा। रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सेवा संकल्प अभियान के तहत रोजगार विभाग द्वारा बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा में आयोजित किया जा रहा है। मेले के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह अध्यक्षता करेंगे। मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा। रोजगार मेले के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रोजगार की जानकारी मिलेगी तथा उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप नियोजन का अवसर भी मिलेगा। रोजगार विभाग ने युवाओं से अधिक संख्या में रोजगार मेले में शामिल होकर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। बस्तर संभाग के 4 जिलों के 3,800 से अधिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए जगदलपुर में आयोजित सहायता शिविर का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। शिविर में नक्सल विस्फोट, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से अंग गंवा चुके लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। शिविर के पहले चरण का कल समापन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज आयोजित होने जा रहे सहयोग केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। छत्तीसगढ़ के कथित कोल लेवी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में कल चार्जशीट पेश किया, जिसमें 12 आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 9,500 पन्ने का छठवां पूरक चालान पेश किया है, जिसमें देवेंद्र यादव और विनोद तिवारी सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पेंड्रा पुलिस ने यात्री बस से गांजा तस्करी करते हुए बस मालिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 245 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लग्जरी बस से ही गांजा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर बस से 5-5 किलो के 49 पैकेटों में भरा गांजा बरामद किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में अनियमितता के मामले में लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच जारी है और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कोरबा जिले में सोमवार को हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 बाइकों को एक साथ टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक हादसा 2 नंबर खदान रोड के पास हुआ। दोनों बाइकों पर 2 लोग सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंगापुर की कंपनी छत्तीसगढ़ के एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का

पेश करेगी। रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और पेंड्रा पुलिस ने एक यात्री बस से करीब 1,20,00,000 रुपए का गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टानसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की

0: मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनोबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज विनोद खन्ना, जाने माने अभिनेता, जी हाँ, जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना? उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, गीतकार फारूक केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

0: मेरी जान का दुश्मन हाय हाय
1: हाय हाय,
0: सैया बल्ली प्यार का दुश्मन हाय
1: हाय,
0: मेरी जान का दुश्मन हाय।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम तुम और वो, जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर आशा भोसले और विनोद खन्ना के, वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: भरे
1: हरे हरे
0: तू काहे डरे डरे
1: हरे हरे
0: आज चाल तुझा
1: राधे श्याम।
2: और आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीदा।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छूट।

0: यह तो इतना ही में रहेंगे, जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आज फिर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है ना। और दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में चलिए उन्हीं खास मुलाकात की गलियों में, जहाँ पहली नजर, पहली बात और पहली मुलाकात एक खूबसूरत याद बन गई हमारी जिंदगी में, उसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो हमारी इबारत आज क्या है आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत या यूं कहें टेक्स्ट पढ़े देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में भी वो पहली मुलाकात किसी से भी हो सकती है, उसका जिक्र आप भी अगर करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा और ये मुलाकात और रोचक हो जाएगी। हमारी आज की इबारत है, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? कभी वो पहले पहले प्यार की मुलाकात जैसी खूबसूरत रही होगी, कभी कुछ और, और कभी लगता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बस इसी ख्याल से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैसे सच कहें तो कई बार ये मुलाकात एक बहाना है, असली बात तो दिल की होती है। और किसी खास से मिलकर लगे तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, फिर दो बेचैन दिल मिल जाएं तो दो चैन चाहने वाले, दो चैन ना चाहने वालों की मुलाकात हो सकती है, और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई है। फिर लगता है जैसे मुलाकातों का मौसम आ गया, मगर कुछ मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि कल की हसीन मुलाकात के लिए आज की रात की यादों में कट जाती है। और कभी कभी दिल डरता है कि कहीं जाने वाले से मुलाकात न होने पाए। तो बस आज के इस सफर में मुलाकात के इन्हीं रंगों से हम रूबरू होने वाले हैं। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ खास गीत, ऐसे गीत जहां मुलाकातों का जिक्र है और जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं इन गीतों की तरह। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताजा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें

इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना, न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं, लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है और आगे आपने कल के का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नज़ारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहां, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ, तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहां मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे के मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया जब मैं अपने

पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहां से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहां बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूं और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो यह अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है, इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त परिवार रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारे श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है, उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्म पत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली। कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान बनी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ, क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी

करने की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बातें, बस मजा आ जाता है। तो बस आपका ये सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं, तो वो निकल जाता है मुंह से कि वाह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे हाँ, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और जिंदगी के लंबे सफर को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहब्बत जिंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थी ये भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

क्या लिखा है? हाँ, लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है कुछ मुलाकातें, तो सीने में याद बन जाती है किसी से, मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दिया आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूं। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इला अरुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इला अरुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे जो अब भी है। चमड़े से बनी सफेद चप्पल पहने, सफेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए। वो सफेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए, आपने अपने दिल को खंगाला ना। गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे। इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे कहते हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूं मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है। विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैयालाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार, है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में। बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस जी, अच्छा यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूं, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुंचा भी देंगे उन तक। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई, बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे, जैसे मुझे बरसों से जानते हो। ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों से फोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगी पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो है, वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद है, कौन कौन से गीत है। फिलहाल सुनिए ये गीत।

जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्रीकृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबादत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो

0: प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती की पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है, हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं,

लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है। कभी वो रास्ते का हिस्सा बनता है और कभी किसी इमारत की नींव, तो कभी किसी कलाकार की कल्पना का एक सुंदर रूप।

से। एक पत्थर का महत्व उसकी मजबूती में छिपा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

जिस पत्थर ने चोट सहना सीखा वही मूर्ति बनकर सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला

0: 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु पेड़ पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य

0: और संकल्प की याद दिलाती रहे, जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
2: स्टेच्यू आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर, कृपया से फिर से सुन लें दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
3: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बात

0: बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजें आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितलकर की।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे। आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नुमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: लक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

0: तरफ है तिरछी नजर और एक तरफ है पतली कमर, बाजी बराबर लगी हुई ना इधर कसर ना उधर कसर।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें

0: जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सखियों सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं,
2: लेकिन
1: फिर भी हम विषय बताते हैं कि किन
2: जिससे कि हाँ जैसे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
1: अभी हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
2: हाँ, ये तो है।
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करेंगे?
2: आज हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर।
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब।
1: जी, और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या,
2: त्योहार के नाम से

0: मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा, तो खरीदारी भी
1: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना होता है, खरीदारी करने जाना है, मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
0: और जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता हैं वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
1: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते हैं चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
0: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है,
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम को संभालना है तो भाई गाने
1: गीत तो सुनना पड़ेगा
0: जी।

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था और इसके जो शब्द थे ना कि तन मन की सुध-बुध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें सुध-बुध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी सुध-बुध नहीं रहती और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दिया माटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, इनकी सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही है। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं से हुई थी।
0: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे, ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गांव-गांव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये सब नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई और

0: साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए जो भी कुछ गांव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
1: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
0: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी
1: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचें कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
0: अभी समय हो गया एक छोटे से
1: अंतराल का। हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है,
1: है
0: और
1: भी अच्छा।
0: अब बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। यानी बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आबैल मुझे मारो और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब दनादन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश है इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछ नहाल। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछ नहाल। प्यार की

0: प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया।
1: आरती, ये खूबसूरत गीत था ब्लफ मास्टर फिल्म का, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई इससे डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भैया, आरती, मिठाई,
1: मिठाई आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार नहीं सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए

0: बस
1: एल्बम
0: फिर
1: लेके
0: क्या
1: तो
0: हो गया काम, फिर तो सफाई बंद, यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला।
1: और इतने सारे ऑफर भी उन पे डाल दिए जाते हैं, और घर से जब हम निकलते हैं ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं, सजावट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो। और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो,
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
0: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी, जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, इतना सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है, तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में, लेकिन उसे उठा लाते हैं।
1: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें, इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
0: बिल्कुल, और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का उत्साह तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना,
1: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहां से वहां रख दिया,
0: बस
1: ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से,
0: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रखी, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे हैं दिख रहा है क्या, देखो हम काम कर रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
1: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हो और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, देते थे लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियां लेती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए बहुत सारी, जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
0: और
1: है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद।

0: फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है और पूरा घर, कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकौड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीजें मुझे मिलती नहीं है और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मेरी जो चीजें वो मैं ही रखता हूं, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्योहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्योहार में सफाई होती है ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं और घर को साफ करने के लिए भाई नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है। जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी जो सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, किसी को थोड़ी कम होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल। और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सब सजावट करते हैं,
1: देखिए ना संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा परिवार पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताजा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया, तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े बर्तन मिठाइयां और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़ लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम भी सायोनारा कहने का,
1: हम भी सायोनारा कहते हैं,
0: कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर, ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से, बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेड के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी, मतलब मैं थोड़ा सा खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूं, कैसे बात करूं।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे। सबसे ज्यादा जरूरी और आपके पसंद

0: विद्या गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे वो भी आपको शेयर करने और रेडियो में जैसे हम आए विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ.
1: बिल्कुल.
0: तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते हैं.
1: बिल्कुल. मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे. सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है. तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं. पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे.
0: अच्छा.
1: हाँ जी. तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए. तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी. फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था.
0: हाँ, 4 या 5 बजे.
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी.
1: तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था. लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था. उन्होंने, बच्चे ही थे और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए. और मैंने जब रेडियो लगाया और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया. मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई. और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं. 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है.
0: अच्छा,
1: हाँ जी.
0: क्या बात है.
1: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता. क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया. और उसकी तैयारी कैसे की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
0: जी जी.
1: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया. और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा.
0: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया. और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है तो 50% विविध भारती का भी है. विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए,
0: जी,
1: है ना. और हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है. तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना चाहता हूँ.
0: ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती. बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए.
1: शुक्रिया.
0: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए, क्या वो इस चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं, उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं. दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जिसे सही मानो में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में?
1: बिल्कुल. अरे वाह. एक तो जहां पे मतलब, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था. अगर मेरी आंखें खुल गई हो 2:30-3 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे. मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी. तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा. करेक्ट. तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे.
0: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे?
1: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा.
0: अच्छा,
1: है ना. बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से. अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है. तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ. तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा.
0: अच्छा.
1: मेरे पिताजी ने कहा अच्छा

0: में भर्ती होगा, तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल। और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों की
0: और
1: नगरी में आना ही है
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी।
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे,
0: अरे बहुत
1: किस तरह
0: ज्यादा,
1: के आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच,
0: बिल्कुल
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह है कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई
1: कोई
0: बार
1: ना
0: मुझे
1: कोई
0: लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी,
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी पांच भाई थे और उनमें से तीन भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है। वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलॉसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
1: बिल्कुल।
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूं कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है जिसे हम
0: हाँ
1: बाहर तलाशते हैं।
0: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: यही एटीट्यूड था मुझे। कभी भी
1: क्या
0: शक
1: बात
0: नहीं
1: है।
0: हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहां
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
0: यस।

0: तो बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस लिवाओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी,
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ, बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी।
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
0: बिल्कुल
1: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी,
0: था,
1: हाँ जी, हाँ
0: इसीलिए
1: जी, हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं सुनने
1: देखो,
0: वाले?
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
0: जी
1: अरे

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया है,
1: हाँ जी,
0: है ना? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहाँ से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया, और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई

0: चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं मैं तो देख चुका हूँ। बोला नहीं नहीं फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चोंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
1: अच्छा
0: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्त तो भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगा यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से चूंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
1: जी,
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियाँ आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊँगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था। यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ,
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा।
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीच का जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां, लोगों
1: बिल्कुल।
0: को लगता है अरे ये सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल,
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस। और जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन, ध्यान।
0: बिल्कुल

0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूँ, उस पल को जी लूँ। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है उसके आसपास भी चला जाऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूं तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले
0: जी
1: लिखते थे वो। मैं उसमें बाल कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूँ कि क्राफ्ट सीख लूँ, तरीका सीख लूँ, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊँगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लगता था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें, है
0: जी
1: ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूँकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
0: अच्छा
1: मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और
1: हाँ
0: उसके
1: जी,
0: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
1: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे

0: कहीं है। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल।
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी
0: हाँ
1: याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते हैं आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो। कुछ भी आइडिया नहीं था, आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ लगता क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता है ना,
1: जी
0: 50 चीज़ें सोचता, उस समय कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा। फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए
0: मजेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था,
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते।
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, या मुंबई में हूं, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूं,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत जरूरी था, तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूं, उछलता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए
1: जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूँ ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊँ तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहाँ से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहाँ से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था, और
1: अच्छा
0: सब पैदल क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे,
1: बिल्कुल
0: तो मैं पैदल ही निकलता।

0: पसीने से तर बतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात ये है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए ये सब चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे। तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था, उसमें तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है, मैं रोज 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे। हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं। तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है, रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए, जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो, तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे। तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया, फिर 1-1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है,
0: आशीर्वाद है। अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके,
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं
1: बिल्कुल
0: सारे बचपन के सारे गाने लेकर
1: बिल्कुल,
0: के।
1: सुनवाते हैं
0: हाँ
1: गीत।
0: जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्ते

0: दारों को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा।
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये गणेशपुर, गुड़गांव, मदन नगर, टुकुडांड, सिलफिली, कनकनगर, बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, सोनगरा, दुर्ती, मायापुर, रामेश्वरपुर, झींगापारा, खड़गवा, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 62 है। ये भगवानपुर, नवापारा, तनवारी, कोटराही, पेंडारी, रेवतपुर, धंधापुर, उधवाकटरा, छलकुपारा, बदौली, जवाखाड़, सोनहद, धौरा, चमरसरई, चिनिया, महावीरगंज, इंदरपुर, रामपुर, अन्नपारा, नेऊरगंज, बसेरा खुर्द, मरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये रामनगर, पथरापारा, झिरमिटी, जजगी, मोहनपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, तपकरा, पत्थलगांव, बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये लोटापानी, मयूरचुंदी, जामचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, भारी बहार, कोरंगामल, सागजोर, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, झिक्की, खंताडाण, परसाडाण, पेटा, कुर्डे के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 77 है। ये आमापाली

0: आमगांव, ओंगना, रुपुंगा, पोटिया, धवईडांड, कूड़ेकेला, बंगरसूता, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये पीड़िया नोन बिर्रा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा, केंदई और पसान में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, मोहनपुर, बालमपुर, बोकरामुड़ी, लालपुर, कोयलारगढ़रा, सिमरहा, बनिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के तमनार और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये झिंगोल, कशडोल, अमलीडी, छर्रा टांगर, पूंजी पथरा, बटुरा कछार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, धमलपुरा, कोसमसरा, गुड़ागढ़, हरदी, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुने थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनेगा झलकी जरा सी आंख लग गई, लेखक हैं गिरेंद्र प्रसाद। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्वच्छता हम सभी का परम दायित्व। साथ ही सुनिएगा चर्चा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह पर। इसके अलावा सुन सकते हैं परीक्षा पे चर्चा पर। साथ ही सुनिए क्रम रोजगार सूचना। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे जनसेवा ही सेवा देश सेवा अभियान है, इसके तहत विषय इज ऑफ डूइंग बिजनेस आज शाम 7:20 से आप सुन सकते हैं गैर फिल्मी गीतों कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज रात्रि 8 बजे से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले सकते हैं आज रात्रि 10 बजे से। पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें हम आपके लिए कराएंगे आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज की सांधिकारण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं झलकी। जरा सी आंख लग गई, लेखक हैं गिरेंद्र प्रसाद।

0: दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं, यहां तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं।
1: हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा, अरे भगवान कहाँ चली गई? देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जलाकर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल। बा जाए ऐसी पत्नी से।
2: क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है क्या?
1: लो और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी?
2: मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊँ, दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती।
1: हाँ हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो, मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ।
2: पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई?
1: चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी?
2: अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी

0: कान नहीं बिगड़ जाती।
1: लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता, क्यों?
0: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
1: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी, कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान,
0: क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं।
1: हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी।
0: हाँ हाँ मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी।
2: देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं, बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है, अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे।
3: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
4: अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इतनी नींद से सोइए।
3: अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है।
4: कानपुर? कानपुर तो चार स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए।
3: पर कानपुर छूट कैसे सकता है, ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है।
4: ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब।
3: वाह साहब, आप मजाक करते हैं, यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें और अभी हंस रहे हैं।
4: हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं।
3: छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता।
4: खबरदार,
3: तमीज ही नहीं है।
4: खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीज नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा।
3: देखो मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा।
4: तुम्हारी क्या मजाक, तुम मुझे सबक सिखाओगे? दूंगा झापड़
3: मारोगे।
5: आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे? और आगे जाने का इरादा है क्या?
3: हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं।
4: फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा।
5: छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए, इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी
3: चाहिए। वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं, मेरी क्या गलती है, जरा सी आंखें ही तो लग गई।
2: जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही ली आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से चार स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें, और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब, ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए।
6: बड़ा बाबू नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार, तबीयत तो आपकी ठीक है ना? तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू?
7: आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप सेल ले लीजिए।
6: बड़ा बाबू मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ, मेरे बिल का क्या हुआ?
7: आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया।
6: पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था, आज तो चेक देने की बात है ना?
7: हाँ बड़ा साहब ही देंगे, मेरे पास चेक कहाँ है भाई?
6: कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ, बाहर है दफ्तर।
8: क्या कहा बड़ा बाबू ने, चेक मेरे पास है, नहीं तो
2: मेरे पास तो

0: कागज वागज नहीं है। कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था।
1: पर सर वे तो कह रहे हैं आप ही के पास चेक है।
0: क्या कहा? मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है।
1: पर सर वे तो सो रहे हैं दफ्तर में।
0: व्हाट? क्या कहा? दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए मैं खुद देखता हूँ। आइए। बड़ा बाबू, चंद्र प्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए।
2: हाँ तो दिया साहब, आपसे यहाँ कोई चेक वेक नहीं है।
0: आप तो होश में है बड़ा बाबू, मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था।
2: सर, आप?
0: हाँ हाँ बड़ा बाबू, मैं। आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। आज से आप घर जाकर चैन से सोइए। मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ।
2: सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
0: नो नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते। दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू।
2: सर मैं सोया नहीं था सर।
0: व्हाट? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
2: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
3: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू। आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे। ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं। अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहें और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।
4: जी सुनते हैं? ओहो, सुनिए ना। अरे अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह, बाथरूम की बत्ती चल रही है। आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे, वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ, अरे अरे महावीर महावीर, लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो।
5: जय बजरंग बली के, जय बजरंगी बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं।
4: पकड़ो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। अरे चोर पकड़ो
5: लिया। आप क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था, तुझे मालूम नहीं? मेरा नाम बजरंगबली है, बजरंगबली है, बजरंगबली। तेरी गर्दन तोड़ दूँ। हाँ, अरे गर्दन छोड़ दूँ। अरे तो तुझे प्यार करूँ, तू है कौन? कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या तू मेरा मालिक है क्या?
4: अरे अरे सुनते हैं जी। ओहो सुनिए तो, बाथरूम से निकले तो बाहर, देखिए चोरी हो रही है घर में। आप सोए हुए हैं, मैंने क्या करें, कब तक क्या कीजिएगा? अजी उठिए उठिए उठिए, महावीर पकड़ो पकड़ो।
5: ये लीजिए मालकिन।
4: हाँ बड़ा आया है चोरी करने
5: चोर
4: के लिए।
5: पकड़ा गया। मालकिन कहता क्या था? हमारी सुनी ना, वो कहता था मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ। लगता है कि तू मेरा मालिक है क्या?
6: अरे मैं चोर नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
4: बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला है। ला महावीरा, जब झाड़ू दे तो
6: अरे चोर नहीं हूँ।
5: मालकिन बत्ती जला के देखते हैं।
4: जला जला, ये तो आप ही हैं।
5: मालिक है,
4: आप तो हमारे मालिक हैं जी। राम, क्या हुआ महावीर, तुझे अपने मालिक को मारते हो? राम, तेरा हाथ नहीं गल गया? अरे महावीर राम, हे भगवान, तू अभी निकल जा मेरे घर से, अभी चला जा।
5: मालकिन मालकिन, आप ही ने जो कहा था कि घर में चोर आया है, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन।
4: रमा चोट आई,
6: पर क्यों बिगड़ती हो?
4: हाँ
6: रमा, गलती तो मेरी ही थी,
4: चलिए
6: नींद में ही बाहर निकल गया
5: बजरंगबली।

0: लीजिए, पानी पी लीजिए।
1: पानी पी लीजिए मालिक, पानी पी लीजिए।
0: हे भगवान, आप भी धन्य हैं। मैं तो सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख
2: जी हाँ, तो देखा आपने एक कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास। सोने वालों की कमी नहीं है।
3: जरा सी आंख लग गई।
4: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
5: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
6: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुँचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मनु प्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:30 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्वच्छता हम सभी का परम दायित्व। साथ ही सुनी का क्रम रोजगार सूचना और चर्चा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर। इसके अलावा सुन सकते हैं क्रम परीक्षा पे चर्चा पर। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:00 से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। जनसेवा ही देश सेवा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम विषय इज आप डूइंग बिजनेस आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज शाम 7:00 से। 11 फिल्मी गीत आप हमारे केंद्र से सुनेगा आज शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज रात्रि 8:00 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 10:00 से। पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकरण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं मन प्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं एक सूचना कार्यालय थाना प्रभारी खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। थाना खरसिया जिला रायगढ़ के मार्ग क्रमांक 99/2026 धारा 194 BSNSS के मृतक बबलू पिता नामालूम उम्र 60 वर्ष करीबन सामान्य परिचयपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल का वारिशान पतासाजी हेतु आकाशवाणी से किया जा रहा है। विषयांकर लेख है कि दिनांक 27/9/2026 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से मर्ग संबंध में डॉक्टर द्वारा लिखित तहरीर पर थाना चकदनगर रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही कर शव को ससम्मान कफन दफन कराया गया है। घटना क्षेत्र रावर्सन होने से डायरी प्राप्त हुई है। मृतक बबलू उम्र 60 वर्ष के लगभग का पता परिचयपुर वेस्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल के वारिशान का कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मृतक का हुलिया ऊंचाई करीबन 5.4 फीट, रंग सांवला, सिर में बाल हैं, शरीर सामान्य है, संडो बनियाइन पहना हुआ है, गले में काला बाजारू धागा एवं ताबीज पहना हुआ है, कमर में सफेद धोती ढकी हुई है।

0: मालिक साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर,
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
10: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 मिनट हुए, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, युवावाणी प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा, और हमेशा की तरह आज भी कोशिश रहेगी कि हमारी ये बातचीत सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहे, बल्कि आपको कुछ सोचने का मौका भी दे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, हमारा कमरा साफ रहे, कपड़े साफ हों। लेकिन क्या अपने घर को साफ रखना ही काफी है? जरा सोचिए, अगर घर के बाहर सड़क पे कचरा पड़ा हो, नाली गंदी हो, आसपास प्लास्टिक और गंदगी जमा हो, तो क्या हम सच में खुद को साफ सुथरे माहौल में रहने वाले कह सकते हैं? यही वजह है कि स्वच्छता किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की है, वो भी साझेदारी की। अक्सर हम सोचते हैं कि सफाई का काम किसी सफाई कर्मचारी का है, लेकिन सच तो ये है कि सफाई कर्मचारी हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को ही साफ करते हैं। अगर हम कचरा फैलाए ही नहीं, तो गंदगी काफी हद तक अपने आप कम हो सकती है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी हमसे, आपसे, मुझसे, हमारे घर और हमारी छोटी छोटी आदतों से। एक छोटी सी आदत सड़क को साफ रखती है, और एक छोटी सी लापरवाही उसी सड़क को गंदा कर सकती है। दोस्तों, स्वच्छता का मतलब सिर्फ कचरा उठाना नहीं है, स्वच्छता का मतलब है गंदगी को फैलने से रोकना। अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग रखना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, सार्वजनिक जगहों पे कचरा न फेंकना, पानी को बेवजह गंदा न करना और अपने आसपास की जगह को साफ रखना, ये सब स्वच्छता का हिस्सा है। और इसका सीधा संबंध हमारी सेहत से भी है। जहां गंदगी जमा होती है, वहां मच्छर और कई तरह के कीट पतंगे पनप सकते हैं। गंदा पानी और अस्वच्छ वातावरण कई बीमारियों का कारण बन सकता है। यानी सफाई सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार किसी पार्क में एक इंसान कचरा फेंकता है, तो कुछ ही देर में दूसरे लोग भी वही कचरा डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई शुरुआत में ही कचरा डस्टबिन में डाल दे, तो दूसरे लोग भी उसी आदत को अपनाने लगते हैं। इसलिए बदलाव हमेशा किसी एक इंसान से शुरू होता है, और हमें वही बदलाव करने वाला इंसान बनना है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि सार्वजनिक जगहें हमारी अपनी हैं। सड़क हमारी है, पार्क हमारा है, बस स्टॉप हमारा है। अगर हम अपने घर में कचरा फर्श पे नहीं फेंकते, तो सार्वजनिक जगह पे क्यों फेंकें? जहां संभव हो, कपड़े या दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले बैग का इस्तेमाल करें। पानी की बोतल, कप या दूसरी चीजें बार बार इस्तेमाल करने की आदत डालें। सार्वजनिक जगहों पे गुटखा या तंबाकू खा के ना थूके, ना खुद गंदगी करें, ना दूसरों को करने दें। क्योंकि स्वच्छता कोई एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि रोज की आदत है। और जब अच्छी आदत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तभी असली बदलाव आता है। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और अपने आसपास भी साफ सफाई को लेके जागरूकता फैलाते रहें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। और आज महीने का पहला मंगलवार, जिसमें क्रम रहता है रोजगार सूचना का, हम क्रम में बढ़ेंगे। उससे पहले लीजिए करते हैं चर्चा। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आसमान को देख के सोचा है कि इन चमकते तारों के उस पार आखिर क्या है? चांद तो हमें अपना सा लगता है, लेकिन उसके आगे फैला ये अनंत अंतरिक्ष आज भी हमारे लिए रहस्यों से भरा हुआ है। और इन्हीं रहस्यों को समझने,
अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। इस साल विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम रॉकेट रेवोल्यूशन यानी रॉकेट क्रांति रखी गई है। ये थीम पुनः प्रायोज्य रॉकेटों, निजी प्रक्षेपण कंपनियों, छोटे प्रक्षेपण वाहनों और उन्नत विनिर्माण तकनीकों के माध्यम से अंतरिक्ष तक पहुंच को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने पर केंद्रित है। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ रॉकेट और अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अंतरिक्ष तकनीकी का बड़ा योगदान है। हम मोबाइल में GPS से रास्ता ढूंढते हैं, मौसम की जानकारी, TV, इंटरनेट की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन सब में अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह तकनीक की भूमिका होती है। आज अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी तेजी से आगे आ रहे हैं। यानी आने वाले समय में युवाओं के लिए इस क्षेत्र में सीखने और काम करने के अवसर और बढ़ सकते हैं। तो इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह सिर्फ आसमान की तरफ

उबरने और परीक्षाओं को एक उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रेरित करना है। इस साल इसका 9वां संस्करण था। परीक्षा के डर को दूर कर आत्मविश्वास बढ़ाने और समय प्रबंधन पे मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री देश विदेश के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद कर रहे हैं तथा उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इस साल के संस्करण में रिकॉर्ड 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, इस परीक्षा में सिर्फ अच्छे नंबर पाने का लक्ष्य न रखें, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। मेहनत करें, सकारात्मक रहें और खुद पे पूरा भरोसा रखें। दोस्तों, इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम रोजगार सूचना की ओर में इस गीत के साथ, जो है फिल्म भाग मिल्खा भाग का। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और जावेद बशीर ने। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

सभी श्रोताओं का स्वागत है क्रम रोजगार सूचना में, जिसमें बातें होंगी सरकारी व निजी क्षेत्रों में आई वैकेंसियों के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं सूचनाओं की तरफ। इसमें सबसे पहली रोजगार सूचना ये है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल CGSSB के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ई एवं टी संवर्ग के शासकीय शालाओं में व्याख्याता लेक्चरार के 854 पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा LSL 26 का विज्ञापन जारी किया गया है। हिंदी के 120, अंग्रेजी 120, संस्कृत 120, भौतिकी 94, राजनीति शास्त्र 100, इतिहास 100, भूगोल 100 और अर्थशास्त्र के 100 पोस्ट इसमें शामिल हैं। बीएड के विद्यार्थी जिन्होंने मास्टर्स किया है इन विषयों में और CGTET या CTET क्लियर या पास कर चुके हैं, वे 26 अक्टूबर 2026 सोमवार के शाम 5 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में होगा। साथ ही परीक्षा की संभावित तिथि 29 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन CGSSB की ऑफिशियल वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in पे जाके कर सकते हैं। आवेदन शुल्क व अर्हताएं ऑफिशियल पेज पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चलिए आपको सुनवाते हैं अमित और कविता के युगल स्वर में फिल्म चालवास का ये गाना। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, रोजगार सूचना में अगली सूचना। लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेजिस में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संविदा के 1812 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://eduportal.cg.nic.in पे जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 21 अक्टूबर दिन बुधवार है। जरूरी नियम शर्तें व अर्हताएं भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ लीजिए सुनिए फिल्म मिशन कश्मीर का यह गाना। शंकर, जसविंदर और सुरिंदी के गुलस्वरों में गीतकार हैं राहत इंदौरी, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोता का कार्यक्रम युवाणी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइन्स बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
3: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है, लोकतंत्र के आवरण

0: में और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
1: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। हमारे केंद्र से सुनिएगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। जनसेवा ही देश सेवा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम सुनिएगा। विषय होगा इज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा आज रात्रि 8:08 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से। विविध संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 10 बजे से। पुरानी फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें हम आपके लिए कराएंगे आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकारण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती,
5: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें।

0: यादों के उजाले
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
2: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा
4: मुझे याद सब है जरा जरा
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली
5: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में जी हाँ प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल लाइव टीवी ऑन डिमांड फिल्में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम डिजिटल रेडियो गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर
6: करण के गठन ला देहे मंजूरी बस्तर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 8 और 9 अक्टूबर के जगदलपुर में होही सम्मेलन में 15 राज्य के सहकारिता सचिव और 14 ठिन राज्य के पंजीयक लीही भाग और राजधानी रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर के राज्य स्तरीय रोजगार मेला लगाए जाही युवा मल्ला उखर योग्यता और कौशल के मुताबिक मिली रोजगार के मौका। अब समाचार विस्तार ले केंद्रीय मंत्रिमंडल ह एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन ला मंजूरी दे है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठका के बाद पत्रकार मल्ला जानकारी देवत सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हकीहीन कि एखर ले परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान योजना मूल्यांकन निगरानी और प्रभाव आकलन ला मजबूती मिलही। उमन कहीन की देश के सकल घरेलू उत्पाद करीबन 7-8% के दर ले बढ़त है और एकर संग लॉजिस्टिक्स के मांग सरलग बढ़त है। श्री वैष्णव हकीहीन की ये बढ़त मांग ला पूरा करे बर देश भर में कतकुन राजमार्ग रेलवे लाइन जलमार्ग हवाई अड्डा और नवा बंदरगाह बनाए जाते एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण 10 बच्चर के बेराला ध्यान में रखत राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार कर ही केंद्रीय मंत्रिमंडल छोटे और मध्यम उद्यमी मन ला निवेश खातिर 10,000 करोड़ रूपया के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड के स्थापना ला मंजूरी दे है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली घाव राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 8 और 9 अक्टूबर के जगदलपुर में होही। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय कोतिले होवैया इस सम्मेलन में 15 राज्य के सहकारिता सचिव और 14 ठिन राज्य के पंजीयक भाग लीही। सम्मेलन की अगुवाई केंद्रीय सहकारिता विभाग के सचिव आशीष कुमार भूटानी करही। सम्मेलन में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति और दुग्ध सहकारी समिति के गठन समिति के कंप्यूटरीकरण डिजिटल सेवा भंडारण क्षमता बढ़ाए और सहकारी बैंकिंग ला मजबूत करे के संबंध में गोटबात होही। समिति कोतिले खातु बांटे और बहुराज्य सहकारी संस्था मन के संग मेलजोल में घलो गोटबात होही। अवैया 3 महीना भर कार्य योजना तैयार करे जाही। ये दौरान अधिकारी मन बस्तर के सहकारी समिति लघु वनोपज और जाति सहकारी संस्था के दौरा करही। सिंगापुर के एनर्जी कैपिटल ग्लोबल कंपनी छत्तीसगढ़ में AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस में करीबन 41,750 करोड़ रूपया के निवेश करी। सिंगापुर में राखे गए प्रथम सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में के छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ला 43,250 करोड़ रूपया के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिबद्धता मिली। एमा छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता के AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस बनाए जाही। छत्तीसगढ़ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन में ये फोरम में सहभागिता करत रही। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू काली नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राखे गए विश्व आवास दिवस समारोह में माई पहुना के रूप में संग्री। ये बेरमा श्री साहू हकीन की घर से रिप बनाए के विषय नोहे भलुक सुरक्षा सम्मान मौका और बने जीवन ले जुड़े विषय रहे। उमन बतैन कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 मा 1,25,00,000 ले ज्यादा घर मंजूर करे जा चुके है। एमाले 1 करोड़ ले ज्यादा घर माइलोगिन के नाव में हरे। उमन कहीन की आवास के मतलब सिर्फ घर देवाना नो

में पानी साफ सफाई अवई जवई के सुविधा बने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसन जरूरी सुविधा सुनिश्चित करना है। सेवा संकल्प अभियान में रायपुर में 7 अउ 8 अक्टूबर के राज्य स्तरीय रोजगार मेला लगाए जाही। रोजगार विभाग को तिले ये मेला बुढ़ापारा के बलबीर से जुनेजा इंडोर स्टेडियम में रखे जाते। ये मेला में माई पहुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो ही उन्हें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम के अगुवाई करही। मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर के 10 बजे बिहिन या शुरू हो ही। रोजगार मेला ले प्रदेश के युवा मल्ला प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार बढ़ जोड़े जाही। युवा मल्ला आने आने क्षेत्र और प्रतिष्ठान में मौजूद रोजगार के जानकारी मिली और उखर योग्यता और कौशल के मुताबिक मौका मिली। रोजगार विभाग युवा मल्ले ज्यादा ले ज्यादा संख्या में रोजगार मेला में संघर के मौजूद मौका के फायदा उठाए के अपील करी है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। आकाशवाणी केंद्र रायपुर कोतीले जन सेवा से देश सेवा मां विशेष कार्यक्रम के श्रृंखला प्रसारित करे जाते। यही कड़ी मां आज संझा 7 बजे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मां उद्योग संचालनालय के उपसंचालक अमित त्रिपाठी ले लेगे भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन अब हफ्ता में एक दिन के जगह 2 दिन चलही। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन ले आज द्वितीय साप्ताहिक ट्रेन ला सांसद चिंतामणि महाराजा हरियर झंडी दिखा के रवाना करीन। ये दौरान उमन यात्री मल्ला भेंट करके सुखद यात्रा के शुभकामना दिन। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के संचालन अब हरेक मंगलवार और बृहस्पति के करे जाही। ये ट्रेन अंबिकापुर ले बिहनिया 7:30 बजे निकलही। वहीं लहुटत बेरा ये ट्रेन हरेक इतवार और मंगलवार के रतिहा 11 बजे हजरत निजामुद्दीन ले निकलही। परिवहन मंत्री केदार कश्यप काली बलौदा बाजार जिला के गांव परसा भदेर में नवा बने जिला परिवहन कार्यालय भवन के लोकार्पण करीन। ये बेरा मां उमन किहिन की परिवहन विभाग के सेवा ला डिजिटल करे जाते। अवैया बेरा मां लोगन गाड़ी संबंधी जरूरी काम घर बैठे पूरा कर सकी। ये मौका मां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हकीन कि जिला मां जल्दीच आधुनिक वाहन टेस्टिंग सुविधा करे जाही। पर्यटन विभाग ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में बने काम करैया मनखे और संस्था ला प्रोत्साहित करे खातिर चेंदरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार के घोषणा करे है। एमा चुने गए मनखे या संस्था ला 1 लाख रुपया के नगद रकम और प्रमाण पत्र दे जाही। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल कहिन कि राज्य सरकार के प्रयास हवे कि पर्यटन के फायदा सिर्फ मुख्य पर्यटन के जगह तक सीमित झन रहे भलुक दूर दराज के गांव और जनजाति क्षेत्र तक पहुंचे। उमन किहिन की गांव में पर्यटन ले वहां के युवा माइलोगिन स्व सहायता समूह कारीगर मन भर आजीविका और स्वरोजगार के नवा मौका तैयार करे जाही। ये पुरस्कार भर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कोती ले अर्जी मंगाई जाही। चुने गए विजेता और संस्था के अगुवाई करैया मल्ला राज्योत्सव के मौका मां सम्मानित करे जाही। पशुधन विकास विभाग गौधाम योजना में प्रदेश में 40 और नवा गौधाम बनाए के मंजूरी दे है। इमा सरगुजा अंबिकापुर बिलासपुर सारंगढ़ बिलाईगढ़ रायपुर दुर्ग बेमेतरा नारायणपुर और जसपुर जिला में गौधाम बनाए जाही। इमा गौवंशी पशु मन बरसेट पानी बिजली समेत मवेशी मन के सुरक्षा और देखभाल ले जुड़े जरूरी सुविधा शामिल है। कोरबा जिला में काली तेज रफ्तार ट्रेलर है 2 फटफटी सवार मल्ला एक संग्रह टक्कर मार दीस। ये हादसा में 3 जन के मौत हो गए, उन्हें एक आने मन के घायल हो गए है। ये घटना बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र में खदान रोड तिर होइस। जानकारी के मुताबिक दोनों फटफटी में दू दू झिन बैठे रहीन। यही बेरा तेजी ले आवा ट्रेलर है 2 गाड़ी ला अपन चपेट में ले लीस। उन्हें राजनांदगांव जिला के ठेलकाडी चौक में पाछू संझा तेजी ले आवत गाड़ी के चपेट में आए ले एक झिन शिक्षिका के मौत हो गए और 2 झिन छात्रा घायल हो गए हैं। तीनों स्कूल छूटे के बाद बस के अगोरा करत रहीन। पुलिस गाड़ी ला जब्त करके ड्राइवर ला हिरासत में ले ले है।
छत्तीसगढ़ में अभी हाले में हुए भारी वर्षा और बाढ़ ले प्रभावित 49,000 ले ज्यादा लोगन ला सुरक्षित जगह में अमराए गए है। सरकार कोती ले दे गए जानकारी के मुताबिक प्रभावित लोगन मन पर 152 राहत शिविर बनाए गए है, जिहां करीबन 12,000 लोगन के रहे और खाए पिए के व्यवस्था करे गए है।

बाहरले प्रदेश के 22 ले ज्यादा जिला प्रभावित हुए हे। सुकमा और बस्तर मा सब ले ज्यादा प्रभाव पड़े हे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक गांव फेर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ह एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन ल दे हे मंजूरी। बस्तर मा राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 8 और 9 अक्टूबर के जगदलपुर मा होही। सम्मेलन मा 15 राज्य के सहकारिता सचिव और 14 ठिन राज्य के पंजीयक लिही भाग। और राजधानी रायपुर मा 7 और 8 अक्टूबर के राज्य स्तरीय रोजगार मेला लगाए जाही। युवा मन ल उखर योग्यता और कौशल के मुताबिक मिली रोजगार के मौका। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 में आइए सुनते हैं फिल्म संगीता कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में आम बख्शी के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। फिल्म मोहब्बतें से ये गीत है।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बरसात का एक गीत। समीर के लिखे बोलते संगीत नदीम श्रवण का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में गाया ये गीत आसिद भोपाली का लिखा, संगीत राम लक्ष्मण का है। आइए सुनते हैं पहले संदेश, फिर सुनेंगे फिल्म मैंने प्यार किया का गीत।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP तक के फोर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। जगदलपुर में 8 अक्टूबर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

आयोजित किया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आंकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण 10 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल कंपनी छत्तीसगढ़ में एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस में 41,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गए छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को 43,250 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर इस फोरम में सहभागिता कर रहा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 8 और 9 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 15 राज्यों के सहकारिता सचिव और 14 राज्यों के पंजीयक भाग लेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता विभाग के सचिव आशीष कुमार भूटानी करेंगे। सम्मेलन में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों और दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, समितियों के कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल सेवाओं भंडारण क्षमता बढ़ाने और सहकारी बैंकिंग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं के साथ समन्वय भी एजेंडे में रहेगा। अगले 3 महीने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस दौरान अधिकारी बस्तर की सहकारी समितियों और लघु वनोपज तथा जनजाति सहकारी संस्थाओं का भी दौरा करेंगे। सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार विभाग द्वारा ये मेला बूढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा। रोजगार मेले के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रोजगार की जानकारी मिलेगी तथा उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप नियोजन का अवसर भी मिलेगा। रोजगार विभाग ने युवाओं से अधिक संख्या में रोजगार मेले में शामिल होकर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 1 के बजाय 2 दिन चलेगी। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से आज द्वितीय साप्ताहिक ट्रेन को सांसद चिंतामणि महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन अब प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को किया जाएगा। ये ट्रेन अंबिकापुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन प्रत्येक रविवार और मंगलवार को रात 11 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होगी। पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चेंद्रू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की घोषणा की है। इसके तहत चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि चेंद्रू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। इस पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। चयनित विजेता अथवा संस्था के प्रतिनिधि को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। पशुधन विकास विभाग ने गौधाम योजना के तहत प्रदेश में 40 और नए गौधाम की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, नारायणपुर और जशपुर जिलों में गौधाम बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उन

0: यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम ऐसी ही एक पहल के बारे में बता रहे हैं। ये है भारत का आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल।
1: आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी नीति में एक नया मानदंड स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल बताया। इस नीति के तहत आतंकवादी हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा। आतंकवाद की जड़ जहां से भी सामने आएगी, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा। आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई में परमाणु धमकी बाधा नहीं बनेगी। साथ ही आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पिछले साल 6 मई की रात और 7 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों पर सटीक कार्रवाई की। प्रधानमंत्री के अनुसार इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत का रुख स्पष्ट है, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही बेहतर दुनिया की गारंटी है। यही है आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा जनसेवा से देश सेवा के तहत विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी कड़ी में आज शाम 7 बजे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उद्योग संचालनालय के उपसंचालक अमय त्रिपाठी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विश्व आवास दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि आवास केवल निर्माण का विषय नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है। श्री साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1,25,00,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बलौदाबाजार में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट खोलने की घोषणा की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज बिलासपुर, मुंगेली और बलरामपुर जिलों के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान भी राज्य के कुछ स्थानों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग बाल गृह और विशेष विद्यालय शिक्षा का मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के आवागमन की सुविधा के लिए ई रिक्शा प्रदान किया। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक के रूप में मोहम्मद आरिफ की नियुक्ति की गई है। बालोद जिले की सिंचाई कॉलोनी में कल एक युवती पर एसिड हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के बांकी मोगरा क्षेत्र में कल तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को एक साथ टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। और राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी मुख्य चौक पर बीती शाम तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक शिक्षिका की मौत हो गई जबकि 2 अन्य छात्राएं घायल हो गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। जगदलपुर में 8 अक्टूबर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम। इसमें सुनिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उपसंचालक उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन के अमय त्रिपाठी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की है।
5: श्रोताओं नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के तहत हमारा आज का यह अंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर केंद्रित है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शासन में उद्योग संचालनालय के उप संचालक श्री अमय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
6: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
5: अमय जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कारोबार करने में सुगमता, इसका मतलब क्या होता है, यदि हम आसान शब्दों में किसी को बताना चाहें तो?
6: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एकदम सामान्य शब्दों में यह मतलब है कि कोई व्यापारी या कोई उद्यमी
5: जी
6: बिना इस चीज की परवाह किए कि उसको जो सरकार की तरफ से बहुत सारे अनुपालन करने हैं या बहुत सारी अनुज्ञप्तियां लेनी है, इसकी परवाह किए बगैर या इसके बोझ से दबे बगैर आसानी से अपना व्यापार कर सके। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि प्रक्रियाएं आसान है और जो भी अनुमति किसी उद्यमी को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए चाहिए वो उसे निर्धारित समय सीमा में मिल जा रही है, तो वह अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा अपने बिजनेस पर, न कि अपनी अनुमतियां लेने के लिए इधर उधर दौड़ने में अपना समय वेस्ट करेगा। तो यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार करने की सुगमता है।
5: मतलब इसको एक आम भाषा में लोग इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस के नाम से भी शायद समझते हैं, वही चीज है या उसके इसके और भी डायमेंशन या और भी आयाम है इसके?
6: सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक भाग है
5: जी।
6: इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये भी आता है कि आप कई ऐसे नियम हैं जो कि आज के दिनांक में रिडंडेंट हो चुके हैं, जिनकी आज जरूरत नहीं है, उनको हटाना भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है।
5: बिल्कुल।
6: उसके अलावा ऐसी व्यवस्था लागू करना जिससे लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर ही अपने जो नियम या पालन है उसका सत्यापन कर सके या उसका प्रमाणन कर सके, यह भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधानों को हटाना जो कि पहले आपराधिक मामले थे क्रिमिनल प्रोविजन से, उनको डिक्रिमिनल करना, ये भी एक पार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक व्यापक शब्द है
5: जी,
6: जिसके अंदर आता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान आता है, कंप्लायंस बर्डन को कम करना आता है और डीरेगुलेशन की एक्सरसाइज आती है
5: जी। यदि हम उद्योगों या निवेशकों की नजर से देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है उनके लिए किसी राज्य में ऐसी नीति का लागू होना?
6: निवेशकों की दृष्टि से ये काफी जरूरी चीज है, किसी भी राज्य या किसी भी स्थान पर यदि उनको बिजनेस करना हो तो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि उस राज्य में बिजनेस करना आसान है तो जो उद्यमी है वो अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसको सारी जो अनुमतियां हैं वो समय से मिल जाती हैं और वह अपना समय से व्यापार चालू कर सकता है। और किसी भी व्यापार में समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, तो उसकी वो कॉस्ट एक तरह से सेव होती है।
5: बिल्कुल।
6: और वो अपने प्रोडक्ट पे और मार्केट पे ज्यादा रिसर्च कर पाता है, ध्यान दे पाता है
5: जी। यदि हम बात करें केंद्र सरकार की और छत्तीसगढ़ सरकार की भी, तो केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में देश भर में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कारोबार को आसान बनाने के लिए मोटे तौर पर क्या कदम उठाए हैं, तो पहले आप केंद्र सरकार के बारे में बताएं और फिर छत्तीसगढ़ में क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
6: केंद्र सरकार में जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो नोडल विभाग है केंद्र सरकार का, था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए
5: जी।
6: तो उनके द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान करके एक एक्सरसाइज शुरू की गई थी 2015 से, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों को कई डायरेक्शंस दिए गए सुधार करने के लिए, और इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग करना भी शुरू किया गया। इससे राज्यों में धीरे धीरे सुधार हुए और केंद्र सरकार ने अपने भी काफी जो नियम थे उनको सरलीकृत किया, डिजिटलाइज किया इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। इसके अलावा फिर एक एक्सरसाइज लाई गई रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बर्डन मतलब एक उद्यमी को जितने कंप्लायंस जरूरी होते हैं उनमें जो अनावश्यक है उनको कम करना, या जो आवश्यक भी है उनको सरलीकृत करना। जैसे कि यदि मान लीजिए 6 पेज का फॉर्म है उसकी जगह उसको 1 पेज का फॉर्म करना, ठीक है। यदि उससे 10 दस्तावेज लगते हैं या बार बार दस्तावेज जमा कर रहा है तो उसको दस्तावेज कम करके एक बार में दस्तावेज लेना
5: जी।
6: और सभी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना
5: जी।
6: इसके अलावा फिर भारत सरकार में जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू की डीरेगुलेशन, जिसके 2 फेज हो चुके हैं। डीरेगुलेशन में ये है जो रेगुलेशंस है, जो बहुत कड़े रेगुलेशंस है या बहुत सालों से कई ऐसे रेगुलेशंस है जिनकी अब जरूरत नहीं है, या अंग्रेजों के जमाने के कुछ है जो क्रिमिनल प्रोविजंस उनको डिक्रिमिनलाइज करना, ये सब डीरेगुलेशन एक्सरसाइज के पार्ट थे। तो इसके 2 फेज हो चुके हैं डीरेगुलेशन एक्सरसाइज के, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने लीड किया इसको और सभी स्टेट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार ने एक्सरसाइज की है। इसके अलावा भारत सरकार ने जनविश्वास अधिनियम पारित किया था 2023 में, और उसके बाद फिर अभी दूसरा भी किया है, और उसी को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ने भी 2 जनविश्वास अधिनियम पारित किए हैं।
5: हाँ, वही जो आपने आखिरी में छत्तीसगढ़ की बात करी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए, उसे आमंत्रित करने के लिए और यहाँ पे उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके बारे में बताएं कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या कदम उठाए गए हैं।
6: छत्तीसगढ़ हमेशा से एक अग्रणी राज्य रहा है बिजनेस रिफॉर्म करने में
5: जी।
6: और हाल के 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने 500 से अधिक रिफॉर्म किए हैं।
5: अच्छा,
6: इन 500 से अधिक रिफॉर्म में यह है कि हमने एक तो अपने सिंगल विंडो सिस्टम को रिवैम्प किया। अब जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें लगभग 190 सेवाएं हैं जो आप एक पोर्टल से ले सकते हैं। एक उद्यमी एक पोर्टल से ही सभी के लिए आवेदन कर सकता है और वो एंड टू एंड ऑनलाइन सर्विस है, तो उसको प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन मिलता है और वो अपने आवेदन को ट्रैक कर सकता है
5: जी।
6: इसके अलावा हमने ऑटोमेटिक म्यूटेशन सुनाऊंगा, जिसमें यदि आप लैंड की रजिस्ट्री कर रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं तो नामांतरण आपका अपने आप हो जाएगा, आपको उसके लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने हैं। इसके अलावा शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में फॉर्म हुआ, 24/7 दुकानों को खोलने की अनुमति हुई।
5: बिल्कुल,
6: पहले यह था कि महिलाओं के लिए रात को काम करना अलाउ नहीं था शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, उसको ऐसा प्रावधान किया गया कि विद सेफ्टी फीचर्स वो रात को भी अलाउ। तो ये कुछ एग्जांपल है जो छत्तीसगढ़ ने किए। ऐसे ही 500 से अधिक रिफॉर्म छत्तीसगढ़ ने किए हैं, और छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसने 2 जनविश्वास अधिनियम पारित किए और पहला राज्य बना है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट अभी मानसून सत्र में पारित किया है।
5: नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया कि 500 से अधिक सुधार छत्तीसगढ़ सरकार ने किए हैं, इसका क्या फायदा मिला, नतीजे क्या आए हैं, कितने निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
6: छत्तीसगढ़ राज्य क्योंकि एक लगातार रिफॉर्म भी कर रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य ने एक आकर्षक औद्योगिक नीति बनाई है
5: जी।
6: तो इस नीति के लागू होने के बाद से और इन रिफॉर्म्स के चलते छत्तीसगढ़ सरकार को 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
5: अच्छा,
6: इनमें से 54% है जिन्होंने अपनी मैदानी कार्रवाई शुरू कर दी है और अगले 20% और है जिन्होंने जमीन आइडेंटिफाई कर ली है।
5: अच्छा,
6: तो इनकी ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है ये जो निवेश प्रस्ताव है। और सबसे बड़ी बात है कि निवेश प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनसे बाहर हट के भी आ रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, AI, IT, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, तो हर तरह के सेक्टर में छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश आ रहे हैं। इनमें जो निवेशक हैं इनको बहुत ही कम समय में अब जमीन मिल रही है, बहुत ही कम समय में जो इनको अनुमतियां हैं वो मिल रही है, तो इससे जो निवेशकों का भरोसा है वो छत्तीसगढ़ पे बढ़ रहा है
5: जी। ये आपने बताया कि जो एक ट्रेडिशनली पहले जो निवेश आते थे उससे अलग हटके अब नए जो क्षेत्र हैं, जो नए सेक्टर्स उसमें भी आ रहे हैं। ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि छत्तीसगढ़ में पहले, यदि हम कुछ साल पहले की बात करें, जो परंपरागत रूप से जो निवेश आते थे वो किन किन सेक्टर्स में आते थे, कि मतलब छत्तीसगढ़ पहले जो निवेशक हैं या उद्योग समूह हैं उनको किस रूप में पहले वो आकर्षित करता था और अब वो यहाँ पर क्या क्या नए संभावनाएं देख रहे हैं।
6: छत्तीसगढ़ का औद्योगिक इतिहास शुरू होता है भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना से।
5: बिल्कुल,
6: तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद क्योंकि वो स्टील प्लांट था उसके एक्सिलरी इंडस्ट्रीज, उससे संबंधित इंडस्ट्रीज भिलाई दुर्ग एरिया में आई थी, तो एक स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज वहां की हमारे राज्य का आधार थी। स्टील के अलावा क्योंकि यहाँ बॉक्साइट होता है नदन साइड में, तो एल्यूमिनियम बेस्ड थी, और क्योंकि कोयला हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है तो पावर प्लांट्स थे, तो ये हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर थे, मेटल बेस्ड इंडस्ट्री और एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि हम एनर्जी सरप्लस, पावर सरप्लस राज्य है, इसका हमको फायदा मिला है कि ऐसे नए सेक्टर्स जिनको अनइंटरप्टेड पावर की आवश्यकता है, AI हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, या ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको

0: निवेश ज्यादा चाहिए, वो सेक्टर्स अब यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हम पावर सप्लाई इंश्योर कर पा रहे हैं और हमारी भौगोलिक स्थिति देश के बीचों बीच है जहां से हम हर जगह सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिट्स आ रही हैं, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स आ रही हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है न्यू एज इंडस्ट्रीज में, इसमें काफी बड़ा रोल है कि जो हम एक पावर सरप्लस राज्य बने हैं उसका।
1: जी अमित जी, बताएं कि जो केंद्र सरकार है वो भी अब इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे जो भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं या अनुमतियां हम जो देते हैं या कोई आवेदन करते हैं तो वो अब ऑनलाइन हो, हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। तो छत्तीसगढ़ में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, इसमें जो है वो ऑनलाइन सेवाएं या जो डिजिटल तकनीक का है वो कितना जो है उपयोग किया जा रहा है, और जो हमारे निवेशक हैं या उद्योगपति हैं उनके लिए इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से कितना आसान बनाया जा रहा है?
0: जैसा कि हमें पहले भी बताया कि हमने एक नया सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया है। इसमें पैन आधारित रजिस्ट्रेशन है कि कोई भी उद्यमी आके अपने पैन कार्ड के आधार पे इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस पे 190 से अधिक सेवाएं वो इस सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उनके लिए आवेदन कर सकता है और उसी आवेदन के आधार पर उसको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है ताकि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू केंद्र की सेवाएं हैं उसके लिए भी जो हमारा निवेशक वो आवेदन कर सके, या कोई नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से आवेदन करना चाह रहा है तो वो स्टेट के सिंगल विंडो पोर्टल पे आके आवेदन कर सके। इसमें जो सरलीकरण हमने किया है कि एक मैंने बताया पैन आधारित रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा जब वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो उसको एक सारी सर्विस की लिस्ट दिखती है जो उसको अवेल करनी है और वो अपनी जिस भी सर्विस के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा औद्योगिक नीति के अंदर उनको जो इंसेंटिव्स चाहिए, इंसेंटिव्स के लिए भी आवेदन और आवेदन के निराकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है
1: जी।
0: तो इसलिए पूरा एक ऑनलाइन डिजिटल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है यहाँ पर
1: जी। अमित जी, एक बात और है कि जब हम निवेश की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, तो ज्यादातर हमारे जेहन में बड़े उद्योग आते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि एक बड़ा रोजगार के जो अवसर हैं वो छोटे या मध्यम दर्जे के उद्योग जो रहते हैं जिन्हें हम MSME कहते हैं वो उपलब्ध कराते हैं लोगों को, और उनका भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रहता है। तो छत्तीसगढ़ में जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए, उनको ये सब सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनके लिए जो अनुमतियां होती हैं उन्हें आसान बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?
0: देखिए, एक तो जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो यूनिवर्सल है, सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। MSMEs भी अपने पैन के बेस पर उस पर रजिस्ट्रेशन करके सारी अनुमतियों के लिए अप्लाई करती है, और जो हमारे सिंगल विंडो के यूजर है उसमें एक बड़ा भाग MSMEs का ही है
1: जी।
0: उसके अलावा अभी जो मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक पारित किया और जो नया एक्ट बनाया छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, उसका भी मेन फोकस है कि जो छोटे इंडस्ट्रीज है, सूक्ष्म उद्यम है या लघु उद्यम है, उनमें जो नॉन हजार्डस कैटेगरी के हैं उनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है ताकि उनको विभाग से इंस्पेक्शन की जरूरत न पड़े और वो खुद अपने जो उनको कंप्लायंस करने हैं उनका प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर कर सके। सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर उनको 15 दिन में फिर अनुमति मिल जाएगी और उससे वो अपना जो कारोबार है वो चालू कर सकते हैं या निरंतर रख सकते हैं। इस एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है जो ये लो रिस्क कैटेगरी वाले इंडस्ट्रीज हैं इनको रिन्यूअल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो उन्हें जो हर 1 साल या 2 साल में ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते थे उस संभावना को भी खत्म किया गया है। तो MSME के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो MSME को ही सेंटर में रख के किए जा रहे हैं।
1: एक बात और रमेश जी कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे उद्योगों की, निवेशकों की, सरकार की ओर से, इसका आम नागरिक या जो हमारा युवा वर्ग है उस पर कितना असर पड़ता है, रोजगार पे कितना असर पड़ता है जब कोई भी राज्य इसे लागू करता है? तो
0: जितना आसान बिजनेस करना होगा उतने लोग बिजनेस करने के लिए आकर्षित होंगे
1: जी।
0: यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बिजनेस आइडिया है
1: जी,
0: उसके पास वो टैलेंट है कि उसको कर सकता है
1: जी,
0: लेकिन यदि उसको ये लगता है कि नहीं, पहले तो मेरे को 50 अनुमतियां लेनी पड़ेंगी, 1-2 महीने ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो शायद वो हिम्मत ना करे। और यदि उससे ये लगता है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और मुझे 15 दिन में अनुमति मिल जाएगी या 1 महीने में अनुमति मिल जाएगी और मैं अपना बिजनेस चालू कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो राज्य का युवा है वो आएगा। दूसरा, जब कोई नया उद्योग स्थापित करता है वो तो अपने साथ 10 नए लोगों को रोजगार देता है
1: जी,
0: और यह राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाती है। तो जैसे अभी मैंने आपको जितने निवेश प्रस्ताव बताए राज्य को मिले हैं, इनसे राज्य में लगभग 1.5 से 2 लाख रोजगार सृजित होंगे
1: जी।
0: तो जो भी राज्य सरकार औद्योगिक नीति या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म कर रही है उसका सीधा असर राज्य में रोजगार सृजन पर पड़ रहा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमय जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा लगा।

0: छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो है वो बिजनेस को, कारोबार को आसान बनाने के लिए इतने सारे कदम उठा रही है, और निश्चित रूप से इससे ना सिर्फ निवेश आएगा देश में, प्रदेश में, बल्कि जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार के भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। तो एक बार पुनः हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ शासन में उद्योग संचालनालय के उपसंचालक अमित त्रिपाठी से हमारी बातचीत। एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उपसंचालक उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन के अमय त्रिपाठी से ली गई भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 7:20 पर सुनेगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज रात्रि 8 बजे से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का लीजिएगा आनंद आज रात्रि 10 बजे से। पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें हम आपके लिए कराएंगे आज रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 11 बजे से। अंग्रेजी में समाचार होंगे आज रात्रि 11:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के सांधिकरण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।
4: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज में इस गीत को।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP तक के 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
2: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूम बूम में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
3: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

0: दीदी अभी तो पितर पाक चला थे तब घरों घर ओरिया लिपाए चौक पुराए रही थे। फिर ऐसे दिन मा घलो हमर दीदी मन बिहने ले घर अंगना खोर गली ला बाहर के मार छरा छिटका देते तब कतका अच्छा लागते।
1: अच्छा लागते है ना, ऐसे है लालजी भाई, साफ सफाई कौन ला बने नहीं लागे तेला बता। फिर ना कभू कभू यू देख माथे कि अपन मुहाटिल बाहर के पड़ोसी घर तीर कचरा ला तिरिया देते
0: सिरतोन बात है,
1: यह बात है गलत है।
0: गलत है, और देख दीदी ऐसे है कि केवल अपने घर ला साफ रखे ले बात नहीं बने, बल्कि गांव शहर सार्वजनिक जगह कार्यालय स्कूल ये सब जगह ला सफाई रखना हम सब के नैतिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहे लालजी भाई, और यही पाए के स्वच्छता अभियान चलाए गए है जेकर उद्देश्य लोगन ला साफ सफाई के प्रति जागरूक करना और अपन घर गांव शहर और तीर तार के वातावरण ला स्वच्छ रखना है। और एकर मूल संदेश यही है लालजी भाई, स्वच्छता केवल कोनो एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी न है बल्कि हर नागरिक के नैतिक जिम्मेदारी बनते, तब स्वच्छ घर स्वच्छ गांव स्वच्छ देश और यही स्वस्थ और सुंदर भारत के पहचान है।
0: बड़ सुंदर बात कहे दीदी। संगवारी हो अब सुनथन क्रम हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम, विषय है नैनो तरल उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं खेती में लागत घटाएं। विशेषज्ञ है श्री राजेश गोले, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर।
1: कोट बात कर रहे हैं लालजी साहू, प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे।

0: संगवारी हो, आज के हेलो किसान वाणी के विषय है नैनो तरल उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं, खेती की लागत घटाएं। और आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमार बीच विशेषज्ञ है श्री राजेश गोले, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। सबले पहली हमार विशेषज्ञ के हमार कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
1: राम राम जी।
0: सर, सबले पहली ये बताते हो, ये नैनो तरल उर्वरक का होते? हम जो पारंपरिक रूप में जो खाद उपयोग करथन ओकर लिए ये कतेक अलग है?
1: नैनो उर्वरक जो हम पारंपरिक दानेदार डीएपी यूरिया डालते हैं उससे ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ साइज का फर्क है। अभी हम जो दानेदार यूरिया या डीएपी डालते हैं उसका साबुदाने का आकार होता है करीब 2 से 2.5 mm, परंतु जो नैनो का आकार होता है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी का, ये उससे करीब 50,000 गुना छोटा होता है, मतलब 50 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो है ये दानेदार का ही स्वरूप और दानेदार जैसे ही काम करता है, पर इसका कार्य करने का तरीका जड़ के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से ना होके पत्तों के माध्यम से। और ये टेक्नोलॉजी इफको इसलिए लेके आया है भारत सरकार के निर्देशन में कि जो हमारी जमीन है वो लगातार रासायनिक खाद के उपयोग करने से उसमें जो है केंचुए कम हो गए हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता गिर रही है, कुछ कुछ किसान भाई हमारे खाद की मात्रा बढ़ाने पर मजबूर हैं। तो इस पूरे जो चक्र को है कि हम खाद की मात्रा बढ़ाते जाएं तो अंत में मिट्टी हमारी पूरी खराब हो जाएगी, तो उस चक्र के बीच में ये देने का तरीका अलग है। ये पत्ती के माध्यम से जाएगा और महीने भर की फसल जब हो जाती है, कोई भी फसल हो, धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, 35 से 40 दिन की फसल में जो टॉप ड्रेस करते हैं, जो फेंक कर खाद देते हैं डीएपी यूरिया, उसको नैनो के माध्यम से देना है। और देना बहुत सरल है, हम महीने भर बाद दवाई भी छिड़कते हैं, उसी के अंदर 2.5 ढक्कन जो नैनो यूरिया की बॉटल है उसको 1 ढक्कन 25 मिलीलीटर का है, तो एक जो पंप है उसमें हमको 2.5 ढक्कन डालना है। 2.5 ढक्कन मतलब 60 से 70 ml प्रति पंप स्प्रे करना है। ढक्कन इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसानों को जल्दी से याद रहे। तो इसके माध्यम से देने से क्या होगा कि जो हमारी जमीन है उसमें दानेदार का उपयोग कम होगा और धीरे धीरे हमारी जमीन में जो जीवाणु हैं जो नष्ट हो गए हैं खाद डालने से, वो जमीन को वापस नरम करना शुरू कर दें।
0: हेलो, हेलो किसान वाणी।
2: हाँ, हेलो किसान वाणी। मैं दुवन राम सोना से बोला था भैया।
0: हाँ भैया, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और बताओ, आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
2: आज ऐसे है कि अब जैसे अभी धान के फसल में जैसे गभोट के आ गए भैया, हाँ, तो उन्हें परनी छिड़काव जैसे नैनो यूरिया के करना है तो वोकर सही रही नहीं, ओकरे संबंध में बात करना जी भैया। और जैसे सब्जी फसल है उसमें भी वो नैनो यूरिया के छिड़काव बन सकते नहीं भैया?
0: हमारे विशेषज्ञ आप लोग जानकारी देवत है।
1: जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि धान फसल में गभोट में नैनो यूरिया का प्रयोग कैसे करें, तो गभोट में नहीं करना है, गभोट आने के 7 दिन पहले, गभोट अवस्था के आने के 7 दिन पहले आपको प्रयोग करना है। और इसके लिए आपको एक जो पंप है 15 लीटर का, उसमें 2.5 ढक्कन नैनो यूरिया डालना है और उसको सुबह 11 बजे के पूर्व आपको स्प्रे करना है। और ध्यान रहे कि स्प्रे करने के बाद अगले 4-5 घंटे में पानी ना गिरे। तो इस प्रकार से आप इसको जो है धान फसल में गभोट की अवस्था के आने के पूर्व करना है, 7 दिन पूर्व। सब्जी फसल में भी आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। जो भी सब्जी फसल आप लगाते हैं, जैसे भाटा है, टमाटर है, मिर्ची है, इसका आप जो है रोपा उपचार कर सकते हैं। और रोपा उपचार करने से क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसकी जड़ बहुत जो है मजबूत और बड़ी जड़ आएगी। तो जब आप रोपा को खेत में लगाएंगे तो आपकी जो फसल जल्दी से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा बड़े फल देगी। और सब्जी फसल में भी जब जब आप यूरिया डालते हैं, खास तौर से 35 दिन बाद, तब आप नैनो यूरिया का स्प्रे एक 15 लीटर टंकी में आप जो है 2.5 ढक्कन उसको डाल के करें, यानी प्रति लीटर पानी में 4 से 5 ml। इस प्रकार से आप सब्जी फसल में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं।
0: हेलो, हेलो किसान वाणी।
3: हाँ लाल जी भैया, नमस्कार। का
0: राम राम भैया, कौन बोला तो कहाँ बोला थोगा?
3: हाँ, मैं मानवेंद्र साहू बोला थोगा, गर्रा पार बांधा बाजार ले।
0: मानवेंद्र भाई के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भाई। और बताओ, आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप?
3: अभी भैया नैनो तरल उर्वरक जो हवे है ना, ओकर बारे में जैसे अपन ला आमदनी जैसे अपन का है जैसे धान में तो करथन अपन खेती में प्रयोग करथन हमन हा तो अन्य फसल में घलो हम कर उपयोग कर सकथन का ओमे आमदनी कर माध्यम से बढ़ा सकथन ऐसे पूछना रही से भैया जी।
0: हाँ तो हमर विशेषज्ञ अपना जानकारी देवत है मानवेन भाई।
1: हाँ मानवेन जी, नैनो तरल जो उर्वरक का प्रयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं वहाँ वहाँ पर आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ये करना है कि दानेदार का उपयोग आधा करना है और दानेदार डीएपी या दानेदार यूरिया का उपयोग आपको केवल जो है 30 से 35 दिन तक ही करना है, और जब फसल में पर्याप्त पत्तियाँ आ जाएँ, 4 से 5 पत्तियाँ प्रति पौधा आ जाए, तब आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग एक टंकी जो आपकी 15 लीटर की है उसमें ढाई ढाई ढक्कन दोनों मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी प्रति लीटर पानी के हिसाब से देखेंगे तो 4 से 5 ml। और इसके बाद जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, कोई जो भी फसल है आपकी सब्जी की या अन्य फसल, या धान में से गबोट अवस्था है या गेहूं के अंदर बाली आने की अवस्था है, तो उसके 7 दिन पूर्व आप नैनो यूरिया प्रति टंकी 15 लीटर पानी में ढाई ढक्कन डाल सकते हैं, या प्रति लीटर के हिसाब से बताएं तो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। धन्यवाद।
0: ठीक भैया, फोन करे हुए खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद।
0: हेलो हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी।
0: हाँ कौन बोला तो कहाँ बोला तो भैया?
4: मैं लखनपुर कवर्धा से बोला था भैया, दानी राम चंद्रवंशी।
0: चंद्रवंशी जी के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भाई, और बताओ आज के

0: मिला के घोल बनाएं और उस घोल को बीज को फैलाकर उस पर लेपित करें, उसको पूरे को चिपड़ दें। 15-20 मिनट छांव में सुखाने के बाद आप उसको खेत में डाल दें। गेहूं के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, सरसों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी रबी की फसल है उसमें प्रति किलो बीज के हिसाब से 5 ml का घोल बनाकर, ध्यान रहे कि नैनो डीएपी सीधे बीज पे नहीं डालना है, आपको नैनो डीएपी का पानी में घोल बनाना है और घोल से बीज उपचार कर। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी फसल का अंकुरण होगा तो उसको जड़ को जो है डीएपी तुरंत मिल जाएगा। जबकि दानेदार में क्या होता है कि जब तक जड़ वहां दाने तक जाएगी तो उसमें 10-15 दिन लगते हैं या 7-8 दिन लगते हैं, तब तक पौधा जो है फास्फोरस नहीं ले पाता है। परंतु जब हम नैनो डीएपी से बीज उपचार कर देते तो डीएपी उसके ऊपर ही, बीज के ऊपर ही रहता है, तो उसको तुरंत मिल जाता है। तो आप करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जड़ें बहुत अच्छे से विकसित हुई हैं, और जब जड़ अच्छे से विकसित होगी तो पैदावार आपकी निश्चित रूप से बहुत अच्छी आएगी।
1: और ठीक भैया, फोन करे हुए खातिर धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: हेलो हेलो, किसान वाणी
2: भैया, मोर माया भरे राम राम।
1: राम राम भैया, और कौन बोला तो कहाँ बोला तो गया?
2: मैं नवागढ़ कटाई जिला में तरल नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वहाँ भैया।
1: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भाई, और बताओ आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहत हो आप मन?
2: हाँ भैया, मैं तो खेती किसानी वाला किसान आदमी हूँ। का है भैया, अधिक हमन कमाई के लालच में अधिक यूरिया डीएपी के उपयोग खेत में करके अपन लागत में बढ़ोतरी कर रहे हमन, और ये लागत में कमी करे बार अब हमार माटी के स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य बने रखे खातिर हम नैनो तरल यूरिया के उपयोग करना चाहथन भैया, तो एकर उपयोग हमन कौन कौन समय और कैसा ढंग ले करी, यही जम्मो बात ल पूछे बार फोन लगाए हूँ भैया।
1: हमार विशेषज्ञ आप जवाब देवत है।
2: हाँ डॉक्टर भैया, राम राम।
0: हाँ राम राम जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि लागत में कमी। देखो, लागत हम खेती जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो है लाभ हम दो ही तरीके से कमा सकते हैं, एक तो लागत कम करना, दूसरा पैदावार बढ़ाना। तो ये जो है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ये काफ़ी कम कीमत है। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल डीएपी करीब 1350 रुपये का आता है समितियों के माध्यम से, बाजार का मूल्य तो आप भी जानते हैं क्या चल रहा होगा, तो ये 600 रुपये का है मात्र। मतलब दो नैनो डीएपी की बॉटल अगर आप जोड़ेंगे तो भी वो डीएपी की बोरी से उसकी जो है कीमत कम है। इसी प्रकार से यूरिया आप देखेंगे 266.50 रुपये समिति में, बाजार का मूल्य आप समझते हैं, तो फिर इसके अंदर भी करीब 450 रुपये, मतलब 450 रुपये में आप दो बॉटल जो है नैनो यूरिया गेहूं की फसल या धान में लगा सकते हैं। और जहां तक पर्यावरण की सुरक्षा का है तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को जो भारत सरकार लेके आई है वो पर्यावरण को ही सुरक्षित करने के लिए लेके आई है। अभी आप देख रहे हैं पानी की बोतल में आप पानी पीते आ रहे हैं, अगर आप लगातार खाद और उपयोग करते रहे तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा के घूमना पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड और इतना ज़्यादा नाइट्रेट पानी में मिल रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है, स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। तो हमें पर्यावरण भी बचाना है, पैदावार भी करना है, तो इसके लिए हमें जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से जो है दानेदार की मात्रा को कम करना है। दानेदार की मात्रा जो भी आप डालते हैं उसको आधा करना है, और उस आधी मात्रा को आपको 30 से 35 दिन तक जो है खेत में उपयोग कर लेना है, और बाकी आधी मात्रा की पूर्ति जो है आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के स्प्रे के माध्यम से करेंगे। और इसके लिए बहुत सरल है, जो भी आप 15 लीटर का पंप डालते हैं या प्रति लीटर पानी के हिसाब से बताएं तो 5 ml प्रति लीटर, 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको मिलाना है। अगर 15 लीटर पंप में डाल रहे हैं तो करीब आपको 60 से 70 ml, या और सरल भाषा में कहूं तो नैनो यूरिया की जो बोतल है उसका 2.5 ढक्कन प्रति 15 लीटर पंप में मिला के आप स्प्रे करना है। दो स्प्रे करना है, पहले स्प्रे में आपको जो है 35 से 40 दिन पे करना है नैनो यूरिया नैनो डीएपी दोनों मिला के 2.5 ढक्कन, और दूसरा स्प्रे खाली नैनो यूरिया करना है गबोट अवस्था आने के पूर्व। और यही आप जो है गेहूं में कर सकते हैं, और चने के अंदर तो आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना है, केवल नैनो डीएपी का आप उपयोग करना है।
2: धन्यवाद।
1: हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी, नमस्ते भैया।
1: हाँ भैया नमस्ते, कौन बोला तू, कहाँ बोला तू भैया?
3: हम बोला था डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिला से।
1: सितारे जी के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भाई, और बताओ आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
3: दलहनी फसल में नैनो यूरिया का कैसे प्रयोग किया जाता है पूछना चाहता हूँ।
1: हमारे विशेषज्ञ आप लोग जानकारी देवत है।
0: दलहन की फसल में नैनो उर्वरक का उपयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो दालें हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में पर्याप्त दलहन नहीं हो रहा है, तो आप दलहन फसल को बढ़ाएं, और इसके लिए आप जो चना लगाएं या मेड़ पर आप अरहर लगा रहे हैं तो उसका

0: कभी बीज उपचार आप जो है नैनो डीएपी से अवश्य करें, और उसके लिए बहुत कम मात्रा लगेगी आपको, 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, या एक ढक्कन जो नैनो डीएपी की बॉटल है उसका एक ढक्कन 5 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। और इस एक ढक्कन को पर्याप्त पानी में मिलाकर, 3 से 4 ढक्कन पानी मिला के घोल बनाएं, या अगर एकड़ पीछे कहें तो चने के अंदर 40 से 50 किलो बीज लगता है, तो आधी बॉटल नैनो डीएपी को 2 से 3 लीटर पानी में मिलाए घोल बनाएं, और उस घोल से बीज को जो है लेपित करें, और 15-20 मिनट सुखाने के बाद उसको आप बुआई कर दें। और इसके बाद अगर आप चाहें तो एक नैनो डीएपी का स्प्रे आप 35 से 40 दिन पे और कर सकते हैं, और नैनो यूरिया का उपयोग आपको दलहनी फसलों में नहीं करना है, क्योंकि यूरिया की पूर्ति दलहनी फसलें, आपने देखा होगा उनकी जड़ों में गठान होती है, तो वो पर्यावरण से खुद जो है यूरिया की पूर्ति कर लेते हैं।
1: भैया धन्यवाद।
2: हेलो हेलो किसान वाणी।
1: राम राम जय जोहार भाई।
2: राम राम भैया, कौन बोला थू, कहाँ बोला थू गा?
1: मैं हाँ भाठा पारा जतरंगील बोलत रहे भैया, हीरू राम साहू का।
2: आपके बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे कार्यक्रम में। आओ बताओ आज के विषय से जुड़े का जानना चाहत हो आप मन?
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
1: वाला खाद वाला से उर्वरक से बढ़ा से चका भैया।
0: देखो नैनो जो उर्वरक है इससे आपकी पैदावार जो है जो आ रही है उससे 1-2 क्विंटल ही ज्यादा आएगा, क्योंकि हम दानेदार खाद को कम करके इसको डाल रहे हैं। अगर आप दानेदार खाद भी डालेंगे और ये भी डालेंगे तो उत्पादन बढ़ भी सकता है, परंतु जो हमारी समझाइश है कि दानेदार खाद डालने से पिछले 50 साल से हमारी जमीन कड़क हो गई है, धरती माता जो है मिट्टी कड़क हो गई है, आपने महसूस किया होगा। अब अगर दानेदार का उपयोग हम और अगले 10-15 साल तक करते रहेंगे तो हमारी खेत बंजर हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो दानेदार खाद हम डाल रहे हैं उसकी मात्रा को आधा करना है।
1: अच्छा।
0: तो मात्रा को आधा करने के बाद आधी मात्रा नैनो से पूर्ति करना है, तो पैदावार जो आपकी आ रही है वह तो आएगी आएगी, परंतु उसमें 1-2 क्विंटल की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि नैनो हम जो डाल रहे हैं वो बढ़ोतरी के लिए नहीं डाल रहे हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं धरती को नरम करने के लिए, क्योंकि अगर मिट्टी खराब होगी तो खेती नहीं हो पाएगी ना आगे।
1: हाँ ना सर।
0: हाँ, तो इसमें आपकी पैदावार गिरेगी नहीं, जो आ रही है उससे 1-2 क्विंटल ज्यादा ही आएगी, पर आप नैनो का उपयोग पैदावार बढ़ाने की दृष्टिकोण से ना करें, आप उसको इस उद्देश्य से करें कि हमारी जमीन को सुधारना है।
2: फोन करे हुए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राम राम भाई।
2: हेलो हेलो किसान वाणी।
3: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार भैया। राम राम, कौन बोला था, कहाँ बोला था गा?
3: राम राम, संजारी नवागांव से बोला था, विष्णु प्रसाद साहू।
2: आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भाई। आओ बताओ आज के विषय से जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
3: धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। मैं नैनो डीएपी के बारे में पूछना चाहता हूँ, 1 एकड़ में कतका डालना है, नैनो पोटास है, डीएपी है, एक बारे में बताती साहब।
2: हमारे विशेषज्ञ आप लोग जानकारी देवत है।
0: राम राम किसान भाई।
3: राम राम भैया।
0: ये जो नैनो डीएपी है इसको आप हर फसल में उपयोग कर सकते हैं, और इसका 2 प्रकार से उपयोग करना है। सर्वप्रथम तो अगर आप जो भी फसल लगाते हैं, जैसे भी आने वाले समय में आप चना लगाएंगे या गेहूं लगाएंगे या सरसों लगाएंगे, तो उसमें आप प्रति किलोग्राम बीज 5 ml है ना, जो नैनो डीएपी की ढक्कन आता है वो 25 ml का है, तो मैं पर ढक्कन की भाषा में याद रखने में आसानी रहेगी, तो 5 किलो बीज पे 1 ढक्कन नैनो डीएपी का घोल बनाना है। पानी ले लें और आपका 5 किलो बीज, जैसे आप गेहूं बोएंगे तो करीब 50 किलो बीज लगेगा, या धान बोएंगे तो 50 किलो बीज लगेगा एकड़ पीछे, तो आप उसी दर से
3: चना डालते हैं सर
0: जी?
3: हम लोग चना डालते हैं रबी फसल में।
0: हाँ, तो चना डालते हैं, तो चना कितना बोते हैं आप 1 एकड़ में?
3: 1 एकड़ में हम लोग 40 किलो लगभग बोलते हैं।
0: हाँ, तो 40 किलो बोते हैं, मतलब आप उसमें 5 का गुणा करेंगे तो करीब 200 ml, मतलब जो नैनो डीएपी की आधा लीटर की बॉटल है, करीब करीब आधी बॉटल को आप जो है 2 लीटर पानी में मिला के घोल बना लें, या जितना आपको आवश्यक लगे, पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं, 2 लीटर पानी में घोल बना के उस घोल से हमको चने के बीज को लेपित करना है, जैसे हम अपने शरीर पे तेल क्रीम लगाते हैं ना, ऐसे उस बीज के ऊपर उस घोल को छिड़कना है, नैनो डीएपी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें 2 लीटर पानी का घोल बना के उस चने के बीज के ऊपर हमको छिड़क के उसको लेपित करना है, और 20 मिनट सुखाने के बाद छांव में उसको हमको बो देना है। और ये जो बीज उपचार है ये आप खेत की मेड़ पे भी जाके कर सकते हैं, या घर में निकलते समय घर पे कर सकते हैं, पर जिस दिन आप बीज उपचार करें उसी दिन बोना है। 3 से 4 घंटे रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि आज उपचार किया और कल बोएंगे, आपको उसी दिन बोना है।
3: ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
2: सर कई जन हमर जो किसान संगी है
0: जी
2: ए मन है जो अपन पारंपरिक जो यूरिया है डीएपी है राखड़ है ये सब के प्रयोग करत रहते
0: जी
2: लेकिन उमल्ला हम कैसे विश्वास दिलान कि ये नैनो तरल उर्वरक है ओकर जगह ज्यादा कारगर है और एकर से आमदनी घलो बढ़ सकते है एला बताते हो।
0: इसके लिए आप किसान भाई कुछ मत करें, एक छोटा सा 20 डिसमिल का 2 काठा 3 काठा में इसको करके देखें। खाली नैनो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप जो है उसको इस्तेमाल पूरे खेत में ना करें, आप एक छोटे से एरिया में आधा एकड़ या 20 डिसमिल में इसको आप करें और उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो है हमको फायदा है। और नैनो यूरिया नैनो डीएपी जब आप डालते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खाद की मात्रा हम कम कर रहे हैं दानेदार की, और उस बची हुई मात्रा को हम नैनो से दे रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा खाद नहीं डाल रहे हैं, हम दानेदार की मात्रा कम कर रहे हैं, तो पैदावार उतनी आएगी। जो आपको फर्क देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब आप नैनो उर्वरक उपयोग करते हैं तो आपके पौधों में कीड़े बीमारियां कम लगती हैं। दूसरी बात, हवा आंधी में पौधा गिरता नहीं है, पौधा जरूरत से ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, तो इससे आपको जो है बचत होती है। जबकि नॉर्मल यूरिया में आपने देखा है कि जैसे हम यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं पौधा एकदम हरा हो जाता है, हरा होने से वो नरम होता है और उसमें कीड़े बीमारियाँ बहुत जल्दी से अटैक करते हैं। और जो किसान भाइयों को जो एक थोड़ा सा नैनो यूरिया के प्रति जो उनको चाहत है कि ये थोड़ा हरा करे, तो ये उतना हरा कतई नहीं करेगा, ये यूरिया से 19 रहेगा और यूरिया का जो हरापन है वो 21 रहेगा। तो आप हरेपन पे ना जाएं, आपकी पैदावार जो आती है उससे 1-2 क्विंटल ज़्यादा ही आएगी, पर आपका पेस्टिसाइड और बीमारी का जो खर्चा है जो भी 4,000 रुपये एकड़ से लेकर 8,000 रुपये एकड़ तक है वो निश्चित रूप से आधे से भी कम हो जाएगा। तो आपको आर्थिक बचत है, पैदावार भी अच्छी है, तो आप कलर के ऊपर फोकस ना करके पैदावार और बचत पर ध्यान दें।
2: सर ये बताते हो जैसे नैनो तरल उर्वरक हर हमर जो पर्यावरण है और हमर जो माटी है उकर बर कतेक सुरक्षित है?
0: ये पूर्णतः सुरक्षित है क्योंकि ये पत्तियों पे जाता है। जो पारंपरिक खाद है वो जमीन पे जब गिरता है, जो हमारी वैज्ञानिक रिसर्च है वो कहती है कि यूरिया हम अधिकतम 40% पौधा उपयोग करता है और जो डीएपी सुपर फॉस्फेट है वो अधिकतम 20-25% उपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर 50 किलो की बोरी डाली है तो उसमें मात्र जो है 25% निकालेंगे तो 12.5 किलो ही उपयोग हुआ है, बाकी वो जमीन में पड़ा रहता है जो मिट्टी को कड़क करता है। यूरिया में जो है 40% अधिकतम है, ये मैं अधिकतम बता रहा हूँ, न्यूनतम भी होता है पर अधिकतम 40% उपयोग करता है। तो 45 किलो की बोरी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें करीब जो है आपका 40% मतलब करीब करीब 23-24 किलो ही उपयोग हो पाता है और बाकी जो है आपका जमीन में पड़ा रहता है, जो अंततः क्या होता है टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड बन के हवा में उड़ता है और अगर पानी ज़्यादा गिर गया तो वो नाइट्रेट लीचिंग होके आपके जल स्रोतों में मिलता है। जैसा आप देख रहे हैं नाइट्रेट की मात्रा भी NIT रायपुर ने यहाँ सर्वेक्षण किया था 5-10 साल पहले, तो नाइट्रेट की जो मात्रा है जो WHO द्वारा सुझाई गई है उससे करीब 5-6 गुना बढ़ चुका है। और नाइट्रेट इतना खतरनाक होता है, अगर ये हमारे शरीर में धीरे धीरे जाता रहा तो हमारी किडनी फेल्यूर है, हमें कमजोरी आती है और प्लस हमारे हीमोग्लोबिन में मिलके ये मेटाग्लोबिन बनाता है।
2: श्री राजेश गोले उप महाप्रबंधक इफको रायपुर, आप हमर बिचायो और हमर किसान संगी मल्ला नैनो तरल उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं, खेती की लागत घटाएं, ये विषय में समस्या और जिज्ञासा के समाधान करें, ये खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

ये रही से हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम। विषय रही से नैनो तरल उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं, खेती में लागत घटाएं। विशेषज्ञ रही हैं श्री राजेश गोले, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। गोट बात करे रही हैं लालजी साहू और प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे।

0: दीदी अब बेरा हो गए है कृषक प्रश्न मंच के, तो संगवारी मतलब बता देता ना आज के प्रश्न।
1: बिल्कुल,
0: संगवारी हो लिखो आज के प्रश्न कि कोनो भी फसल हो ओमे गभोट के कतका दिन पहले नैनो तरल उर्वरक के छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न एक घाव सुन लेवो, फसल में गभोट के कतका दिन पहले नैनो तरल उर्वरक के छिड़काव करना चाहिए, एकर सही जवाब झटकुन भेजू संगी हो ताकि आप मन के नाम सही बेरा में हमन शामिल कर सकन। अब ये खातिर हमार ईमेल आईडी है rai aaj ke prashn 23@gmail.com।
1: और लालजी भाई पाछू हफ्ता जो आज एक दिन हम प्रश्न पूछे रहे ओला बता देते हैं संगवारी मन ला ओकर सही जवाब। तो प्रश्न रही हमार गेंदा के देसी किस्म के नाम बतावो, तो एक सही जवाब है पूसा बसंती। और सही जवाब भेजैया हमार संगवारी मन के नाम बता देथन। हमार संगवारी मन है मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार साहू, राहुल साहू, देवरी भाटा पारा ले हैं गन्नूलाल रजक, मुकेश कुमार रजक, युवान काव्या और तन्नु रजक, बठेना पाटन ले है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, पार्थ, राजेंद्र, मनहरण, मुरली और सुजान वर्मा, पथरिया भरे वाले हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल,
0: और दहान बाधा बाजार ले है रवि शंकर निषाद, मंगलिन, पवन, पेमिन, दुर्गेश, तेंदु भाटा ले उमेन कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका निषाद, यशस्वी, भास्कर, नूतन, सुरेंद्र और किसनमन।
1: गरापर बांधा बाजार ले हैं मानवेंद्र साहू, गंगाराम साहू, सुलोचना और राकेश साहू, कसडोल वार्ड 10 ले हैं समयलाल साहू, कौसल्या देवी साहू, करही बदल ले हैं पुरुषोत्तम निर्मल, कृष्ण कुमार, भूपेश कुमार और ब्रिजमोहन निर्मल, सिरमुंदा ले हैं सूरज कुमार दामले, हेमा दामले और कांतिबाई दामले, लोरमी चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी घलो इन्हें ले है, नागर कोहरा ले हैं झग्गर राम साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। तो लालजी भाई ये तो रही सही जवाब भेजे ये संगवारी मन के नाम, और ये सबो संगवारी मन ला बहुत बहुत बधाई, इखर जवाब जो है वो सही है। ये रही किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और अब होते संगवारी हो जाए के बेरा, तो जाए के पहली आप मन ला बता देथन काली के कार्यक्रम। तो काली गोट बात के संग हो ही क्रम चिट्ठी मिले पत्रोत्तर कार्यक्रम, और आज की सलाह ये क्रम में जानकारी के विषय हो ही ठंड के मौसम में पशुधन के देखभाल और तैयारी, विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर के एल राम, और हो ही कृषक प्रश्न मंच क्रम, गीत संगीत तो होबे करी संगी हो, तब देव विदा। कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मन ला विनीता
0: और लाल जी के
1: राम राम, राम।

0: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं रोक कुमार राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म लावारिस का एक गीत। जावेद अख्तर के लिखे बोल संगीत राजेश रोशन का है।
2: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
3: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

पंकज उदास और साथियों की आवाज़ों में भी आप सुन रहे हैं फिल्म नाम का ये गीत। हम बच्ची के लिखे बोले संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

कयामत से कयामत तक का गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म मैं हूं ना से। जावेद अख्तर के लिखे बोलों को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

मैं हूं ना फिल्म का गीत, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, फिल्म कोयला से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। इंदिवर का लिखा गीत, संगीत राजेश रोशन का है।

0: अभी आप सुने थे फिल्म संगीता कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रूपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए

0: 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें

0: भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
1: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रूपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulsen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम गहरा दाग।

आइए अब सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंदिवर हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, और आप अपने दोस्त राजेश के साथ लीजिए अब सुनिए ज्वेल सिफ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल और SD बर्मन की है तर्ज। फिल्म का नाम बता चुका हूँ, ज्वेल सिफ।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: से आया मेरा दोस्त को सलाम करो।
1: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
2: क्या बदतमीजी है?
3: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है। जो पंचों की राय
4: तूने लड़की को देखा लड़की पसंद है।
1: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो

इसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान के इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। ओ, बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: 1974 हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विनोद खन्ना को।
1: मैं

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदान ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
5: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
5: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

अभी आप सुनते विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे आइए सुनते हैं विविध संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गाए कुछ खूबसूरत गीत और गजलों को। साथ में होंगी साधना सरगम। तो लीजिए करते हैं शुरुआत पंकज उदास की आवाज में जमीर काजमी के लिखे इस गीत के साथ।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते

0: जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

पंकज उदास के गाय इस गीत को भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविध संगीत में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं मनोहर उदास की आवाज में मुदा फाजली के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने। फिल्म आप तो ऐसे न थे।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस

0: एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा। एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी

0: ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises. Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Teerth today, ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from tomorrow till 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
5: एवरी डे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन and the repeated attacks they make on the Supreme Court needs to stop now. In a democracy, if you serve the people, you will receive the mandate. If you fail to get the people's mandate and then abuse the election commission, that is not the way forward.
4: Or election commission ko gaali denge.
1: Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to the headquarters of the Election Commission of India in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Later, Leader of Opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with Party Leader Priyanka Gandhi Vadra and other supporters, entered Akashwani Bhavan and staged a protest on the premises. With regard to today's opposition protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m., it received information from Delhi Police that a delegation of members of Parliament led by the leader of opposition